0: शुभ कल। बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मनीष कार्यक्रम
1: आजीविका में
2: बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, आजीविका की बात जहाँ पर आती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार आजीविका है क्या। लेकिन हमने अपने साथियों को पहले ही बता दिया था कि आजीविका यानी कि हमारी।
2: बिल्कुल सही बात है वर्षा जी, और आप कहना चाह रही हैं कि आप अपनी आय को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं।
1: जी,
2: और कैसे हमारे श्रोता साथी, चूँकि बुंदेलखंड में हम आप देख रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे श्रोता साथी किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं अपना स्वयं का धंधा करके।
1: जी हाँ साथियों, जैसे कि हमने आपसे कहा भी था कि दूसरों की मजदूरी करने से अच्छी है कि हम अपना खुद का एक छोटा सा धंधा लगाएं, यानी कि व्यवसाय लगाएं, जिससे हमें दो पैसे की आमदनी होगी।
2: बिल्कुल वर्षा जी, और बहुत सारे जब हम नुक्कड़ों के पास मिलने जाते हैं तो बहुत सारी हमें सफल कहानी हमें वहाँ पे मिलती है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे सफल लोग निकल के आ रहे हैं जिन्होंने रेडियो बुंदेलखंड पर आजीविका का कार्यक्रम सुनकर अपने खुद का व्यवसाय को शुरुआत की है। तो ऐसे लोगों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, उनकी सफल कहानियों को बताते हैं। जैसे कि हमने बताया था, पहले भी बताया था, सतीश साहू जिन्होंने अपना दूसरों के यहाँ नौकरी करने के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया है, तो एक ना एक कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आय को बढ़ाया है, दूसरों की अपेक्षा अपने घर की आय को और बढ़ोतरी की है।
1: जी हाँ, जैसा कि साथियों उन्होंने बताया था कि हम जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाते थे, वो ऐसे में उन्हें क्या क्या परेशानी होती थी। एक तो टाइम से नहीं पहुँचते थे, घर टाइम से नहीं आ पाते थे, और दूसरी चीज उन्हें तनख्वाह जो मिलती थी, जो पैसा महीने का दिया जाता था, वो समय पे नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, हम कोई भी काम अगर करते हैं तो अगर वो पैसा हमें समय पे ना मिले तो किसी काम का नहीं होता है हमारे।
2: बिल्कुल सही बात है वर्षा जी, जब तक हमें स्वयं का व्यवसाय, चाहे वो हम 2 घंटे अपने लिए क्यों नहीं दें, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम आप देखते हैं कि 24 घंटे में से 12 घंटे दूसरों के मजदूरी करने के बाद हमें तनख्वाह वो 100 रुपए या 200 रुपए या 300 रुपए इस तरीके का देते हैं। हम उनके लिए जब मेहनत करते हैं, क्यों ना हम अपने लिए, खुद के लिए इतनी सारी मेहनत करें कि हम सफलता के बाद सफलता को हम चलते चले जाएंगे और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर लोग हमें नाम से पहचानेंगे।
1: बिल्कुल, और सफल जब ही होंगे जब आप सोच लेंगे कि हमें करना क्या है आखिर, और जब आप करने का निश्चय कर लेंगे तो फिर हमें आप जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सके।
2: बिल्कुल वर्षा जी, और इस कार्यक्रम में हम दोस्तों को बात कराएंगे हीरालाल कोरी जी से, जिनसे बात करेंगे कि उन्होंने तौलिया का व्यवसाय, चूंकि बहुत सारे हमारे श्रोता साथी सोचते होंगे कि कुछ जातिगत जो व्यवसाय रहते हैं वो उनकी ही जाति के लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें भी जाति बात से हटकर उस व्यवसाय को सोचना चाहिए।
1: यानी कि आपके कहने का मतलब है मनीष जी कि कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि मटका बनाना, तौलिया बनाना, ये बहुत से ऐसे व्यवसाय होते हैं जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये इसी जाति के लोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको उस काम को करने में रुचि है तो आप बिल्कुल ये सोच हटा दीजिए जातिवाद की कि ये यही जाति का करेगा, हम भी इसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम अगर

0: एक मटका बनाना जानते हैं और हम कुम्हार नहीं हैं, तो क्या हम अपनी रुचि को आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या हम उससे दो पैसे नहीं कमा सकते हैं? क्या हम अपनी रुचि को आगे ले जाकर लोगों को ये बताएं कि जातिवाद बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं?
1: बिल्कुल वर्षा जी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे तौलिया का व्यवसाय, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि मऊ रानीपुर में सबसे ज्यादा तौलिया का व्यवसाय होता है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर अपने आसपास में तो निवाड़ी में बहुत ज्यादा तौलिया का व्यवसाय चलता है। तो ऐसे में किस तरीके से हमारे युवा साथी इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, तो इस चर्चा को सुनने से पहले हम एक गीत के साथ हम आपको मनोरंजन कराते हैं, और गीत के बाद आपको सीधा हम निवाड़ी ले चलेंगे, और जहां पर हीरा लाल जी हमसे बात करने के लिए तैयार है। तो आइए इसी क्रम में एक हम गीत को सुन लेते हैं।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और दोस्तों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना जिसे गा रहे थे दयाशंकर और उनके साथी।
1: जी हाँ, अब हम आपको इंतजार नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा था कि मनोरंजन के बाद हम आपको सीधा ले चलेंगे निवाड़ी हीरा लाल जी के पास, जो कि आपको बताएंगे कि तौलिए का व्यवसाय किस तरह से किया जाता है और क्या क्या समस्या उनको आती है और क्या क्या सावधानी इसको करने में रखनी चाहिए।
0: तो आइए इस चर्चा को सुनते हैं।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: अपना परिचय दें पहले।
2: हीरा लाल, पूरी कालपुरा निवाड़ी।
1: अच्छा, तो हीरा लाल जी, आप क्या करते हैं इस समय पर?
2: हम तौलिया के काम करते हैं, क्या मशीनें लगाई हुई हैं पावर लूम।
1: अच्छा, तो जैसे शुरुआत बात करें अगर, तो आप तौलिया कैसे, कहाँ से इसका माल लाते हैं, कच्चा माल कहाँ से लाते?
2: कच्चा माल आता हमारा रानीपुर से।
1: अच्छा, कैसा, किस हिसाब से लाते हैं?
2: जैसे धागा है वो तो 100 रुपए किलो भी आता है, 150 भी आता है, हर प्रकार का

0: खरीद के फिर बेलन भी भरवाते हैं।
1: तो इन सब में कितना खर्चा आ जाता है आपका?
0: आप बेलन भराई जैसे 5,000 के आसपास तो बेलन भर जाता है, और फिर धागा उसके बुनने के लिए, माल बनाने के लिए वो अलग खरीदना पड़ता है।
1: तो ये सारा सामान आपको वहीं से
0: रानीपुर मिल जाता है?
1: अच्छा, फिर वहाँ से लाने में कैसा क्या
0: लाते हैं? क्या जैसे इधर से गाड़ी जाती है, गाड़ी में आता है माल,
1: गाड़ी में आता है, फिर वो धागा यहाँ लाने के बाद आप क्या करते हैं?
0: उसका धागा ले जाने के बाद पावर लूम पे जैसे बेलन रख दिया और धागा हाथ से कारी भरती है।
1: अच्छा,
0: उसके बाद बस पावर लूम पे काम करो, कपड़ा बनने लगता।
1: कपड़ा बने, कितने लोगों को आप लगाए हुए हैं?
0: हम जैसे एक मजदूर लगाए हुए, एक खुद करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी करते हैं।
1: अच्छा, वैसे अगर देखा जाए आप नहीं करते तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी?
0: जैसे 2 लोगों की पड़ेगी, जैसे 3 पावर लूम लगाए हुए हैं, घर का धंधा है ये।
1: अच्छा,
0: ज्यादा तो लगाए नहीं हुए हैं, जैसे ज्यादा लगाओ मशीन है तो ज्यादा मजदूर लगेगा।
1: अच्छा,
0: जैसे 3 पावर लूम लगी है तो 2 मजदूर चल जाते हैं उसमें।
1: तो एक दिन में कितना आप बना लेते हैं तौलिया की बात करें तो?
0: एक दिन में तौलिया बन जाती है 40, एक मशीन पे।
1: एक मशीन पे 40 तौलिया?
0: 40 तौलिया बनती है,
1: पूरी कंप्लीट हो जाती है?
0: कंप्लीट हो जाती है।
1: अच्छा, और एक महीने में?
0: एक महीने में आप इसका हिसाब लगा लो, जैसे 40 लगी एक दिन में तो थोड़ा कम प्रोडक्शन हो जाएगा। ये तो पहले का है, थोड़ा कभी लाइट भी नहीं रहे, कहीं कुछ वजह है, हिसाब से प्रोडक्शन कम भी हो सकता है।
1: जो मशीन आप लगाए हैं उसमें लाइट का कैसा क्या कनेक्शन आपने करवाया?
0: हमारा कनेक्शन है 3 फेज का कनेक्शन कराई। हाँ,
1: तो इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाता है? जैसे आप कनेक्शन भी करें वो भी बिल भरना पड़ता है?
0: हाँ, क्या नहीं मिलता, वो तो इतना तो मिल ही जाता है परिवार चलाने।
1: अच्छा, अपना परिवार चलाने और जो व्यक्ति आपके यहाँ लगा हुआ है मजदूर,
0: उसका भी परिवार चल जाता है।
1: कितना उसको देते हैं?
0: उसको जैसे उसका हो जाता है 6 दिन में 1,500 के आसपास का।
1: अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे तौलिया बनाने से पहले?
0: तौलिया बनाने के से पहले क्या, जैसे पहले तो हम जैसे कोई दुकान टेलरिंग की खोले थे मार्केट में, सिलाई का काम करते थे। फिर दिमाग में आया कि पावर लूम लगा लो घर में, तो पावर लूम लगा लिए।
1: अच्छा, तो मशीन आप जो लाए थे वो कहाँ से लाए थे? जो पावर
0: ये मशीन ऐसा है कि जैसे इधर ही इधर व्यक्ति रहती है, कोई नहीं करता है धंधा, कोई कुछ और बदल देता है, इधर ही इधर मशीनें मिल जाती हैं ये।
1: अच्छा, नहीं तो अगर जैसे किसी को खरीदना हो जो मशीनें तो कहाँ से?
0: तो ये टांडा वगैरह जाना पड़ेगा, टांडा में है।
1: ये कोई समूह के द्वारा मिलती है या फिर?
0: हाँ, ये समूह के द्वारा भी मिलती है। अभी रानीपुर में जो है यूपी में, आपको सरकार ने दी है 64 की मशीनें बड़ी बड़ी, और मकान बनाने के लिए लगाने के लिए व्यवस्था पैसा दिया है, 2.5-3 लाख रुपया दिया है। ये समूह द्वारा भी मिलता है, सरकार भी दे देती है।
1: तो समूह द्वारा अगर कोई लगाना चाहे तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा इससे?
0: हाँ, समूह द्वारा
1: सरकार पैसा देती है।
0: हाँ, उससे ज्यादा मशीनें मिल जाएंगी, उसको पूंजी भी मिल जाएगी, वो घर का बिजनेस करने लगेगा।
1: अच्छा, अब आपकी मार्केटिंग की बात अगर करें तो आपका बाजार कहाँ होता है? आप कैसे इसको बाजार में सेल करते हैं?
0: हम लोगों की मार्केट ये ऐसा है कि व्यापारी बने हुए हैं बाहर के, तेजरी से गांठे पैक होके चली जाती है तैयार होके माल,
1: पूरी कंप्लीट या फिर?
0: पूरी कंप्लीट, मैं फ्रेश फिनिशिंग होके तैयार, पक्की बन जाती है। बाहर जाता है, राजस्थान जाता है, भोपाल चला जाए, बहुत जगह जाता माल तो।
1: अच्छा, तो आपको महीने में कितना इसमें प्रॉफिट हो जाता है?
0: महीने में वो ये 15-20 हजार रुपए की कमाई परिवार चलाने लगभग।
1: अच्छा, इसके अलावा आप और क्या करते हैं?
0: बस इसके अलावा क्या है, वही काम है।
1: अच्छा, कितने घंटे आप देते हैं इस काम में?
0: इसमें पूरा लगा रहते हैं वो तो, 10 घंटे करीब काम देना पड़ता है।
1: जैसे सुबह से उठे तो सीधा?
0: बस उसी में वही काम है और है क्या।
1: अच्छा, अगर कोई और लगाना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उसको क्या क्या सावधानी इसमें रखनी चाहिए?
0: और कोई लगाना चाहे तो सावधानी क्या, उसको पावर लूम चलाना सीखना पड़ेगा, जैसे नहीं जानता है तो उसको सभी सीखना पड़ेगा, तो धागे का काम है, तैयारी का काम है।
1: आपकी बात अगर करें तो आपने कहाँ से सीखा, कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी?
0: ट्रेनिंग किया, हम इस काम को नहीं जानते थे, जैसे पावर लूम लगा लिए, कारीगर लोग कर रहे हैं काम, सुधारना भी नहीं जानते थे मशीन, तो वो धीरे धीरे कारीगर लोग चलाए, हम भी सीख गए।
1: आपने पहले कारीगर लगाया?
0: हाँ, कारीगर लगाया, उनने किया काम, जैसे बिगड़ गई मशीन तो मिस्त्री बुलाया, मिस्त्री को देखा ये किस प्रकार का उधारता है, तो अपन देखते देखते अपन भी होशियार हो गए।
1: अच्छा, जैसे कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें परेशानी आती है, कोई ना कोई दिक्कतें आती है, तो आपको ऐसी क्या क्या परेशानी आई?
0: बहुत सी परेशानी आई थी हमको, जैसे उसमें कुछ जानते नहीं थे, थोड़ा भी कुछ बिगड़ जाए, थोड़ा चमड़ा टूट जाए, कुछ भी हो जाए तो मिस्त्री को पकड़ते थे, उसको पैसा देना पड़ता था।
1: अच्छा, और आप अगर बिगड़ जाए तो?
0: आप तो खुद कर लेते हैं, सब
1: खुद कर लेते हैं। अच्छा, सब समझ हो गई है?
0: सब समझ हो गई।
1: अच्छा, इसमें जगह कितनी की जरूरत पड़ेगी, जैसे अगर कोई लगाना चाहे तो उसको जगह की कितनी जरूरत पड़ेगी?
0: जगह के लिए शायद कोई 2 मशीन लगाना पड़े या 3 लगाए 6 लगाए, उस हिसाब से जगह लगती है।

0: 12 बाई 12 के कमरे में दो मशीनें लगती हैं, समझ लो आप, और ज्यादा मशीन है तो 107 की जगह चाहिए।
1: तो अभी आप दो मशीनें लगाए?
0: हम तीन लगाए हुए।
1: अच्छा, और अगर कोई खुले माल में आपसे लेना चाहे, जैसे एक तौलिया दो या तीन चार पाँच, ऐसे में आप
0: दे देते हैं?
1: कितने की एक तौलिया जाती है?
0: जैसे तौलिया कपे के ऊपर है, 12 रुपए की भी, 15 की भी है, 35 की भी है, ये तो वैरायटी अलग अलग
1: है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार।

0: साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आपने इस बातचीत को सुना और जो हीरा लाल जी बता रहे थे कि किस तरीके से हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं तौलिया का व्यवसाय करके, तो हमें भी इस व्यवसाय को अपनाना चाहिए और अपनी आय को बढ़ाना चाहिए।
1: हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तौलिये का ही व्यवसाय करना चाहिए। इससे मतलब ये होता है कि आप जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, आपको किसी भी काम को करने में अच्छी लगन हो, अच्छी पकड़ हो, आप सोचते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए और वो काम खुद का होना चाहिए, तो आप वो जरूर करें और हो सकता है कि उसमें हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकें।
0: बिल्कुल, और मदद करने के लिए चूंकि आपको लगता है कि हमें परेशानी आ रही है ट्रेनिंग्स के लिए, तो बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी ऐसी संस्था हैं जो ट्रेनिंग्स इन सारे व्यवसायों के लिए कराती है। तो आप जुड़िएगा हमसे, बात करिएगा और इस व्यवसाय संबंधी बातचीत करने के लिए हम आपको फोन नंबर दे देते हैं। फोन नंबर है हमारा 94-25-14-17-26।
1: श्रोता साथियों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि रेडियो बुंदेलखंड बार बार आजीविका से जुड़ी हुई बातों पर क्यों जोर दे रहा है, तो आपको बता दें कि हम देख रहे हैं कि जब हम फील्ड पर जाते हैं नुक्कड़ नाटक या नैरो कास्टिंग के माध्यम से, तो देख रहे हैं कि अपने गांव में जितनी जनसंख्या पहले थी अब वो नहीं है। हुआ क्या है कि वो लोग पलायन कर गए हैं, यानी कि अपना भरण पोषण करने के लिए दिल्ली चले गए हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा, आखिर हम लोग कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें बाहर जाने से कितनी समस्या होती है, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, और जब हमारे बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे तो उन्हें कितनी बड़ी समस्या से जूझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम आज मजदूरी कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे बच्चे भी आगे चलकर मजदूरी ही करें, क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगे तो हो सकता है वो कुछ अच्छी नौकरी करें या फिर अपना खुद का धंधा करें या रोजगार लगाएं कुछ भी। तो इसीलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि आप अपना खुद का व्यवसाय लगाइए और अपनी आजीविका को अच्छे से चलाइए।
0: बिल्कुल वर्षा जी, आप एक बात हम इसमें और जोड़ेंगे, क्योंकि हम आप देखते हैं कि जब हम दूसरों की मजदूरी करने के लिए यानी यहाँ से हम पलायन करते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो शिक्षा पर, उनकी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं कि बच्चों पर सबसे खासा असर पड़ता है। लोग सोचते हैं कि मजदूरी का बेटा मजदूर ही करेगा, यानी मजदूर करने वाला व्यक्ति का बेटा मजदूर ही करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मजदूर करने वाले का बेटा इंजीनियर बन सकता है, मजदूर करने वाले का बेटा डॉक्टर बन सकता है, सारे जो रहते हैं मजदूर करने वाले लोग आगे चलकर बड़ा अपना, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और अपने पढ़ाई का स्तर जो रहता है, हम और आप देखते हैं कि पढ़ाई का स्तर जो, अब हम बुंदेलखंड को देखें तो बच्चे जो मजदूर करने के लिए चले जाते हैं साथ में, तो उनका पढ़ाई का स्तर बहुत ही कम हो जाता है, तो अशिक्षित होने के कारण उनको बहुत सारी समस्या आती है।
1: जी हाँ साथियों, तो इसीलिए हमारी बात पर गौर फरमाइएगा कि हम जो आजीविका कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, ये आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, इस पर हमें जरूर अपने सुझाव और फीडबैक दें।
0: बिल्कुल, और इसके लिए आप पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम और छतगेला के पास ओरछा।
1: साथियों, अब हमारा इस कार्यक्रम से जाने का समय होता है, लेकिन आप अपने सुझाव, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल हो या फिर आपने भी इससे कुछ सीख ली हो, अपने जीवन में थोड़ा सा भी अगर बदलाव किया है इस कार्यक्रम को सुनने के बाद, तो हमें जरूर बताएं, हम आपके पास आएंगे और आपकी कहानी सबको सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल, तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और रेडियो साथी वर्षा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: कार्यक्रम मुझे हक है कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4 और हमारे साथ हैं हमारे रेडियो साथी
1: मनीष और साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मुझे हक है, क्योंकि मुझे हक कार्यक्रम जैसा ही नाम है वैसा ही इसका काम है, क्योंकि मुझे हक है, मुझे
0: समझ
1: हक
0: रहे
1: है
0: हैं?
1: जानने का, मुझे
0: मुझे
1: हक है
0: हक है
1: पहचानने
0: पहचानने का और
1: और
0: मुझे
1: मुझे
0: हक
1: हक
0: है
1: है
0: जो मेरे लिए योजनाएं चल रही हैं
1: जी
0: उनका लाभ

0: लेने का।
1: बिल्कुल वर्षा और सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम मुझे हक में बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करते हैं और श्रोता साथियों को फिर से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारे साथियों के साथ, क्योंकि काफी दिनों से मुझे हक कार्यक्रम में हम योजना पर बात नहीं कर रहे थे और हम आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बेरोजगार युवा साथी आप उनके मन में एक ही सवाल चलता है कि हमें साहब योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
0: बिल्कुल, और देखिए होता क्या है, सरकार हम सबके लिए, हम बेरोजगार साथियों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती रहती है हमेशा समय समय पर, जिनका लाभ हमें मिल जाए और जिसकी वजह से हमें एक छोटा सा कुटीर उद्योग ही टाइप कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे हम अपना आय चला सके।
1: बिल्कुल वर्षा, क्योंकि हम और आप ये देखते हैं कि जब आजीविका की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो ये सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लग जाता है, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे रोजगार हम करेंगे, और साथ में ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है हमारे साथियों के मन में चलती है कि क्या काश हमारा ये रोजगार हम जो लगा रहे हैं, जो हम व्यवसाय डालने जा रहे हैं, वो व्यवसाय चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन इसके लिए एक उपाय है, हमारे पास उपाय है, क्योंकि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाए जा रहे हैं। यदि आपके पास रुचि है, यदि आपके पास हुनर है, आप ये देखते हैं कि हम किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं और अपनी हुनर बताते हैं कि साहब हमें ये काम बहुत अच्छा आता है, चाहे वो ऑटो पार्ट्स की दुकान हो, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान हो, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग रहते हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं, उसके कारीगर आप स्वयं रहते हैं, लेकिन समस्या आती है कि हम अपना स्वयं का व्यवसाय नहीं डाल पाते, हम दूसरों के लिए काम करते हैं।
0: अरे अरे मनीष जी, अभी आप सारी बातें बता देंगे तो हमारे श्रोता साथियों को पता कैसे चलेगा कि आज इस मुझे हक है कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के लिए क्या लेकर आए हैं। तो पहले हम बता देना चाहते हैं कि आज श्रोताओं मुझे हक है कार्यक्रम में हमें जानने का हक है कि हम सुनेंगे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पूरी जानकारी कि किस तरह से ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और कैसे हमारे बेरोजगार साथी जो हैं वो इस योजना से जुड़कर लाभ ले सकते हैं।
1: लेकिन वर्षा, हमें लगता है कि एक गीत संगीत हो जाए।
0: अरे मनीष जी, आप बस सुनते ही नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। हम वही बताने वाले हैं कि हम जानकारी लेंगे, साथ में कुछ गीतों के साथ मनोरंजन भी करेंगे और कुछ हम और आप मिलके अपने श्रोताओं को कुछ और नई जानकारी भी देंगे ताकि हमारे साथी कहीं भटके ना और इस योजना तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जो बात आप कर रहे थे कि यहाँ पर एक गीत सुनना है, बिल्कुल चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक बढ़िया सा लोकगीत।
2: लड़का पारे बदाम मांग रहे सुन सुन के।

अपना रेडियो अपनी बातें। रेडियो बुंदेलखंड पर श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये मधुर सा गीत और जिसे गा रहे थे पन्ना लाल अहिरवार और उनके साथी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हम जो योजना के बारे में जानने वाले हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में, उस योजना के बारे में जानते हैं और आपको ले चलते हैं सीधा मनीष जी के पास।

0: तो इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं उद्योग विभाग के अधिकारी। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि उद्योग विभाग की ओर से कौन सी संचालित योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरीके से उसका लाभ लिया जाता है। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिएगा।
1: जी, मेरा नाम हितेश ठाकड़ है और मैं उद्योग विभाग में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ टीकमगढ़ में।
0: तो सर उद्योग विभाग की तरफ से कौन सी योजना संचालित की जा रही है?
1: वर्तमान समय में शासन की 4 योजनाएं हैं जो उद्योग विभाग से संचालित की जाती हैं।
0: जी,
1: चारों के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। पहली योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना।
0: जी,
1: इसके अंतर्गत आपको 18 से 45 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए।
0: जी,
1: इसके अलावा आपको न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना चाहिए।
0: जी,
1: ठीक है। इसमें राशि की बात करें तो इसमें 50,000 से लेकर 10,00,000 तक की राशि आपको आपके व्यवसाय सेवा तथा उद्योग के पर्पज से आपको दी जाएगी। इसके अलावा हमारे आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः ऑनलाइन है। आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन भरना है तथा इसका प्रिंट आउट हमारे जिला कार्यालय टीकमगढ़ में आपको जमा करेंगे।
0: इसको ये मध्य प्रदेश में का मूल निवासी?
1: जी, इसके लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना सबसे पहले बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपके पास 5वीं की अंकसूची होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट है जो ऑनलाइन आवेदन करते वक्त एक आवेदनकर्ता के पास अपने पास होने चाहिए।
0: अच्छा, उस फॉर्म में जब फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है कि कार्य योजना किस तरीके की आपको पूछा जाता
1: है? जी, इसमें क्या है, एक कार्य योजना का प्रारूप होता है, 2 पन्ने का ये प्रारूप है। वो आमतौर पर अपेक्षा की जाती है कि आवेदक द्वारा ये भरी जाए, लेकिन किंतु कई आवेदक इसे नहीं भर पाते हैं। इसलिए ये कार्य योजना हम अपने विभाग में अपने ऑफिस में भरते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप कार्य योजना ना भर पाए तो आप हमारे विभाग में संपर्क करके पहले वो कार्य योजना बनवाए, फिर ऑनलाइन उसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी बेसिक जानकारी पूछी जाएगी आवेदन में, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका नाम, आपकी उम्र, आपका पता, और आप किस बैंक के लिए आवेदन कर रहे हो उसको आपको आवेदन में ऑनलाइन भरना पड़ेगा, जिससे जब आप आवेदन करोगे और जमा करोगे तो हम अपने विभाग से उसी बैंक के लिए स्वीकृत करके आपका आवेदन प्रेषित करेंगे।
0: अच्छा, ये सर उद्योग विभाग जब स्वीकृत भेजता है अपना डेटा तो कौन कौन से बैंकों को जाता है? कैसे?
1: ये इसमें सभी प्रकार की राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक है, वो भी शामिल हैं। लेकिन इसमें एक क्लॉज रहता है कि CGTMSE करके जो प्राइवेट बैंक इसमें कवर नहीं होती हैं, इसीलिए प्राइवेट बैंक आमतौर पर ये केस नहीं करती हैं। जबकि जो शासन की जो सभी समस्त बैंक है, ग्रामीण बैंक से लेके कैनरा बैंक, SBI बैंक, जो भी समस्त शासकीय बैंक है, वो सब इस योजना के अंतर्गत अपने अपने काम करती हैं।
0: अच्छा, तो ये चीज और बताइए, जैसे उसका आवेदन भर गया है, उसने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया है, तो कितने दिन बाद उनको ये राशि प्रदान हो जाएगी, क्या उसकी प्रक्रिया क्या रहती है?
1: जी, जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है और जो भी योजना हमारे विभाग से चल रही है वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत कवर है। इसके अंतर्गत अधिकतम 30 दिवस के अंदर हमें उस पर एक्शन लेना होता है और बैंक को प्रेषित करना होता है। अतः आप जब जिस दिनांक से आवेदन जमा करते हो उसके अगले 30 दिवस के अंदर हम आपके आवेदन पर निर्णय लेते हैं, इसे स्वीकार किया जाए या आगे भेजा जाए, तथा इसकी सूचना आपको मोबाइल से भी दी जाती है।
0: जी जी,
1: और इसमें लगभग 30 न्यूनतम 30 दिवस आप समझिए।
0: बहुत सारे सर हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग जब हम फील्ड पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सर हमने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया था, उद्योग विभाग में जमा भी कर दिया था, लेकिन अभी तक हमारी स्वीकृति नहीं आई है, तो क्या उसका कारण रहता है?
1: जी, कारण इसमें ऐसा हो सकता है कि कहीं मिसमैच हो गया हो आपका फॉर्म हार्ड कॉपी, जैसे आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसे आपको लगता है कि आपको बहुत दिन हो चुके हैं तो आप मोबाइल से या व्यक्तिगत संपर्क से हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हो, आपकी समस्या जो भी उसका निवारण किया जाएगा।
0: जी, और इसके बाद जब बैंक के पास जाता है तो बैंक कितने दिन में उसको स्वीकृत कर देगी?
1: देखिए, बैंक के लिए एक डेडलाइन तो फिक्स नहीं है।
0: जी,
1: लेकिन आमतौर पर बैंक अपनी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण करने के पश्चात ये कर देता है। अब कितना वो टाइम लेते हैं वो हर बैंक का अलग अलग रहता है, इसलिए इसकी जानकारी बैंक वाले ही बता पाएंगे।
0: अच्छा, इसमें ये रहता होगा कि आवेदक जो है यदि बैंक से वो कर्ज लिए हो तो क्या उसकी स्वीकृति हो जाएगी?
1: जी जी, बिल्कुल नहीं, आवेदक को बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। उसी बैंक का नहीं, किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपको लोन दिया जाएगा उससे पहले आपका एक नोटिस लगेगा कि आप डिफॉल्टर तो नहीं हो, तो आवेदक अगर डिफॉल्टर है तो उसको लोन नहीं दिया जाएगा, वो अपात्र हो जाता है।
0: और जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होकर बैंक भी स्वीकृत कर देता है तो क्या डायरेक्टली उसके पैसा एक खाते में जाता है कि जो वो सामान खरीदना चाहता है उसके?
1: जी, इसके बारे में भी हमारे विभाग ने प्रावधान किया है। कुछ अनियमितताओं को लेकर इसका एक समाधान ढूंढा गया है कि जब आप कोटेशन लगाओगे, जैसे मान के चलिए आप जनरल स्टोर खोल रहे हो, उसके लिए आपने सामान लाओगे कहीं ना कहीं से, तो वहां का आप कोटेशन लगाओगे, बिल लगाओगे, तो जब बैंक में वो बिल जमा करोगे आप, तब आपका ऋण स्वीकृत हो जाएगा। जब वितरण की बारी आएगी तो जो वितरण की राशि होगी वो सामने वाले के खाते में जाएगी जहां आपने कोटेशन लगाया है। आपको एक सेल लेटर मिलेगा जिससे आप उस सेल लेटर को वहां लेके जाइए और वो आपको सामान दे देंगे उतने मूल्य का।
0: अच्छा,
1: तो ये इसकी प्रक्रिया रहती है। आपको नगद राशि उतने सामान की नहीं मिलेगी।
0: अच्छा,
1: आपको जो अन्य खर्चे हैं जैसे काउंटर फर्नीचर या जो आपका सीसी लिमिट चलता है बैंक में, उसके लिए आपको नगद राशि मिलेगी, लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा सामने वाले के अकाउंट में जाएगा।
0: अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे किसी ने उद्योग विभाग से अपना लोन पास करवाया है और बैंक ने भी लोन पास कर दिया है, तो क्या उसको पूरी राशि जमा करनी पड़ेगी कि कुछ उद्योग विभाग उसमें छूट देगा?
1: जी जी, इसके लिए देखो शासन ने जो हमारे जो बेरोजगार युवा भाई हैं उनको प्रोत्साहन के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें हर योजना में अलग अलग चार स्कीमें, मैं उसका अलग अलग बताऊंगा। जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात करें तो इसमें जो सामान्य पुरुष है उसको 15%, इसके अलावा वो किसी भी कैटेगरी में आ रहा है, मान के लिए एससी है, एसटी है, ओबीसी है, विकलांग है, अल्पसंख्यक है और महिला है, इन सभी को 30% परियोजना लागत का 30% शासन की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी दी जाती है। आपको जो राशि आपकी है उसमें से 30% घटा के आपको बाकी रुपए बैंक को जमा करना है, जो 30% वो आपको प्रोत्साहन रूप आपके कार्य के लिए दी जाती है।
0: अच्छा अच्छा, और सर ये कितने दिन में उसको जमा करनी पड़ेगा?
1: देखिए ये तो ये बैंक का मैटर है, लेकिन इसमें फिर भी मैं बता देता हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है। इसमें अधिकतम 7 वर्ष रहता है और मिनिमम 6 माह रहता है। इस बीच की अवधि में बैंक आपकी किस्त बनाएगी आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको पूछ के, तो अधिकतम 7 वर्ष रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता, 7 वर्ष के अंदर आपको चुकाना है।
0: और यदि बैंक से वो लोन लेकर वो फेल हो जाता है अपने उद्योग लगाने के बाद, तो क्या उसकी क्या हो रहा है?
1: देखिए, फेल होने पर पहली बात तो जो आप जिसके लिए उद्योग लगा रहे हो पर या जिसके लिए आप मुझे ऋण ले रहे हो वही उसकी गारंटी होता है पहली बात। तो अगर आप फेल होते हो तो वही जब्त होगा सबसे पहले, आपने दुकान लगाई तो उसका सामान, कोई भी चीज आप लगाई तो उसका सामान, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जब आप फेल होते हो या डिफॉल्टर होते हो, इसके लिए भारत शासन की एक स्कीम है जिसे CGTMSE करके बोलते हैं, उसमें क्या है सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें रजिस्टर होती हैं। मान के चलो अनफॉर्चुनेटली कोई उद्यमी डिफॉल्टर हो जाता है तो बैंक अपना जो डिफॉल्ट किया हुआ पैसा है वो वहां से कवर करती है।
0: जी,
1: ये ऐसा प्रावधान किया गया है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: और यदि किस्त उसकी चूक जाती है तो क्या रहता है?
1: जी, किस्त चूकने पर पेनल्टी लगती है
0: जी।
1: उनका कुछ परसेंटेज रहता है बैंक का, 0.2 या 0.5 जो परसेंटेज रहता है, इस हिसाब से पेनल्टी लगती है।
0: अच्छा अच्छा, और इसमें उद्योग विभाग का कोई रोल नहीं रहता?
1: जी नहीं, उद्योग विभाग का रोल यहाँ तक सीमित है कि वो आप जब आवेदन करोगे आपके आवेदन को स्वीकृत करेगा, बैंक प्रेषित करेगा, अगर बैंक आपका लोन वितरित कर देता है तो आपकी जो एलिजिबल मार्जिन मनी है जो सब्सिडी जिसे बोलते हैं वो हम रिलीज कर देंगे।
0: अच्छा जी, इसमें कोई गारंटर रहता है?
1: जी, गारंटर देखो बेसिकली शासन की जो गाइडलाइन है उसमें गारंटर का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ बैंकों के हमारे संज्ञान में आया है कि उनके कुछ इंटरनल सर्कुलर हैं जिसके तहत उन्हें गारंटर की आवश्यकता होती है, तो ये हर बैंक का अलग अलग रहता है, तो ये वही अच्छे से बता पाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आपने जो जानकारी सुनी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जानकारी आप सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है?
1: बिल्कुल वर्षा, क्योंकि ये जानकारी उन युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी है जो रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं। आप घर पे ही अपना स्वरोजगार लगा सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं और बहुत ही कम पूंजी में, बहुत ही कम लागत में ऐसे ऐसे टिकाऊ रोजगार हैं, ऐसे ऐसे सस्ते रोजगार हैं जिसको हम घर बैठे कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। सवाल आता है कि अब पैसे कहाँ से, तो ढाकड़ जी ने हमारे बता भी दिया है कि जो पैसे वो उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृति दी जाती है, वो उद्योग विभाग स्वीकृत कर देता है आपके आपके परियोजना को और वो परियोजना बैंक में जाकर स्वीकृत हो जाती है और आपको एक आसान तरीके से ऋण उपलब्ध हो जाता है और आप अपने स्वयं का जो आपने सोच रखा है उस व्यवसाय को करने में आपको मदद मिलती है।
0: मनीष जी, यहाँ पर हमारे जो श्रोता साथी हैं थोड़ा सा नर्वस तब हो जाते हैं जब वो कहीं प्रयास करते हैं और वो प्रयास सफल नहीं होता है। तो अभी जैसा कि धाकड़ जी ने बताया है कि कई बार क्या होता है कि फाइल यहाँ वहाँ हो जाती है और हम फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो जिस चीज को कहते हैं कि बार बार उस चीज के बारे में हम पूछते रहें। मान लीजिए अगर किसी को हमने पैसा दिया है या कोई चीज हमने दी है तो हम उससे बार बार पूछते रहते ना कि भैया वो चीज ऐसी थी, वो कहाँ गई, या फिर हमने आपको वो पैसा दिया था वो अब कब लौटा रहे हैं, क्या कैसा। तो उस चीज की स्थिति जानने के लिए हम उससे बार बार कांटेक्ट करते हैं, उसको फोन करते हैं या जाते हैं उसके पास। तो ऐसे ही जब हम किसी योजना का लाभ लेते हैं तो हमें उसका फॉलो अप जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप गए, आपने इस योजना की जानकारी ली, इसका फॉर्म डाला और बैंक में या उद्योग विभाग में जाके आपने सबमिट किया और उसके बाद आके आप फ्री होकर घर पे बैठ गए। अब आप सोचेंगे कि उद्योग विभाग वाले खुद आएंगे और वो हमसे पूछेंगे कि भैया आपने किसके लिए अप्लाई किया था। तो ऐसा नहीं है, आप भी एक दो बार वहां पे जाइए और पूछिए उनसे कि साहब हमने जो फाइल दी थी उसका क्या हुआ, कब तक आगे बढ़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके एक तो क्या होगा कि उद्योग विभाग के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे क्योंकि जान पहचान बढ़ेगी और जान पहचान बढ़ने से आसानी से लोग आपको पहचानने लगेंगे। तो आपको कहीं से भी कैसे भी करके किसी न किसी योजना से जोड़ दिया जाता है तो आपका काम आसान हो जाएगा।
1: एक हम अपने श्रोता साथियों को सलाह और देना चाहते हैं, जहाँ तक कि मेरा अनुभव कहता है कि हमारे श्रोता साथी अपने मन में जो आपकी इच्छा है कि हमें इस व्यवसाय को करना है, उसके लिए आप जो सरकार द्वारा, जैसे हमने स्वरोजगार योजना के बारे में बताया है, उसकी सबसे पहले वहां जाकर संबंधित अधिकारी के पास पहले जो गाइडलाइन रहती है उसको पढ़ लेना बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि बहुत सारे साथी सोचते हैं कि सभी को लोन उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। उसके लिए भी कुछ कैटेगरी बनाई जाती है, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कितना पैसा, कितना छूट, ये सारी परियोजना में लिखा रहता है और उसी हिसाब से आपको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को ऋण उपलब्ध हो जाए, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमें पढ़ लिख कर पूर्ण रूप से तैयार होकर तब हमें एक डिमांड करनी चाहिए, तब हमें मांग करनी चाहिए, तब हमें आसान तरीके से वो ऋण आपको उपलब्ध हो जाएगा और आसान तरीके से आप अपने व्यवसाय लगाने में आप सफल होंगे।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है, इस बात पे हम भी थोड़ा सा और कहना चाहेंगे क्योंकि कई बार होता है जब हम बैंकों में जाते हैं तो बिना पढ़े ही हम किसी भी कागज पे दस्तखत कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम पढ़ने में समय व्यस्त करेंगे तो वो हमारा समय बेकार जाएगा या हम कहीं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब भी हम ऐसी किसी योजना का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ते हैं, तो उस योजना के बारे में आपको एक एक जानकारी लेना आपके लिए जरूरी है। आप उस योजना को अच्छी तरीके से पढ़िए कि आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि अगर नहीं आते हैं तो फिर आपका समय वहां पे बेकार जाने वाला है। तो इसलिए पहले से ही आप उसकी जानकारी ले लें ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो। और जहां तक बात होती है पैसे की, तो मनीष जी देखिए, जब हम एक बार ठान लेते हैं कि हमें ये व्यवसाय या कुटीर उद्योग कुछ भी खोलना है, अपना स्वयं का व्यवसाय करना है, पैसा सिर्फ एक माध्यम होता है ना कि रुकावट बनता है। तो आप सारी जो तालमेल होती है, जो भी और व्यवस्थाएं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, उनको एक साथ रखिए। पहले पैसा एक बाद की चीज होता है, पैसा आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, किसी ना किसी योजना से आपको जोड़ ही

0: दिया जाएगा। अगर आपके पास लगन अच्छी है, मेहनत अच्छी है, आप वाकई में चाहते हैं कि आप कोई उद्योग खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है जो चीज, वो होती है प्लानिंग, मार्केटिंग और आपका लगन। आप कितनी लगन से उस काम को करने में लग रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और इसी के साथ, क्योंकि अब हमारे घड़ी और हमारा कार्यक्रम अब हमें इजाजत नहीं देता है कि आगे भी आप बने रहें, क्योंकि बहुत सारी बातचीत भी हो गई है और योजना के बारे में श्रोता साथियों को पता भी चल गया है। तो हमें आशा है कि अगले कार्यक्रम में जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमें कॉल लगाकर पूछेंगे, जानकारी लेंगे या फिर अपने सुझाव जरूर देंगे कि हमने इस योजना के लिए संबंधित अधिकारी के पास जाकर हमने फॉलोअप किया, हमने बातचीत की। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम सुनकर हमारे श्रोता साथी जरूर इस बात पर बिल्कुल अमल रहेंगे कि हमें इस योजना का लाभ लेना है।
0: बिल्कुल मनीष जी, और क्योंकि देखिए घड़ी की सुइयां भी अब हमसे कह रही हैं कि चलिए आपका समय हो गया है, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी हमारा आने ही वाला है। तो श्रोताओं, हम चलते हैं इस कार्यक्रम से, लेकिन जाने से पहले आप सभी से कहना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनमें अगर आपको लगता है कि और बेहतरीन तरीके से कैसे इन्हें डिजाइन कर सकते हैं, कैसे इन्हें आप सबके लिए ला सकते हैं, आप सबके लिए कैसे ये एक लाभदायक कार्यक्रम बना सकते हैं हम, उसके लिए आप हमें सुझाव जरूर दें। और सुझाव देने के लिए हमारा नंबर वही है
1: 92 19 20 77 49।
0: तो अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनैवी बारे हमारे सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करत हेंगे कार्यक्रम अम्मा के चौके में। जी हाँ सखियों, आप तो जानती हेंगी कि अम्मा के चौके में अपन और जो बातचीत को करत हेंगे वह बातचीत अपने किचन से जुड़ी भई तो होती हैगी, एक साथ में रेसिपी से जुड़ी भई होती हैगी कि कोनो बढ़िया सी रेसिपी बनावो अपन और सीखत हेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इन सब में ध्यान देवे वाली बात जा होती है कि अपन साफ सफाई के ऊपर भी विशेष तौर से ध्यान दे देंगे कि साफ सफाई काय जरूरी है अपने लाने, उन चीजों को भी तना गौर अपन और करत हेंगे। और कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा थे जब अपनी सखियां जुड़ के और अपने संगे अच्छी तरह से कार्यक्रम को सुनती हेंगी, साथ ही में फीडबैक भी कार्यक्रम के देती हेंगी। अपने संगे बहुत सारी ऐसी सखियां हेंगी, अब तो आपको बता देवे कि अपनी सखियां इतनी होशियार हो गई हेंगी कि ऑनलाइन के माध्यम से भी रेडियो बुंदेलखंड को सुनन लगी हेंगी। तो हम उन सब सखियन को बहुत ही शुक्रगुजार हेंगे और उनको धन्यवाद करत हेंगे कि वे अपने संगे जुड़ती हेंगी, साथ ही में अपन को फीडबैक भी देती हेंगी। इस कार्यक्रम में आगे आपको बता देवे कि जो भी हमारे श्रोता साथी कार्यक्रम को सुनत हेंगे या इको फीडबैक हम तक पहुंचाऊ थेंगे, तो आपसे भी एक अनुरोध हम करवो चाहेंगे कि अगर आपके मन में भी कोनो अच्छी सी रेसिपी या फिर कोनो भी बढ़िया सी बात अपने मन में चल रही हैगी कि अरे जो चीज हम बहुत अच्छी तरह से बना लेते हैं और इको हमें रेडियो पे जरूर बताना चाहिए, तो आप हमें बिल्कुल बेझिझक होकर फोन लगा सकती हैं। जी हाँ सखियों, और आज के कार्यक्रम में अपन मीनाक्षी राय जी की किचन में चला थेंगे, उनकी रसोई घर में चला थेंगे और देखा थेंगे साफ सफाई के माहौल को देखत भय भी अपन को का ऐसो बता रही हेंगे जी के बारे में अपन उनसे जानवी के लाने गए हेंगे उनकी किचन में। तो आज हम चला थेंगे मीनाक्षी राय जी की किचन झांसी में, तो आपको सुनवाते हैं उन्हें की मुख जुबानी से कि वे अपनी किचन में का बना रही हेंगे और चला थेंगे मीनाक्षी जी के पास।

0: सबसे पहले तो नमस्कार.
1: नमस्कार.
0: नाम क्या है आपका?
1: मीनाक्षी राय.
0: अच्छा मीनाक्षी जी, आज हम आपकी किचन में आए हैं और जानना चाहते हैं कि आज आप क्या बना रही हैं.
1: मैं आज चने की दाल और सोयाबीन के कबाब बना रही हूँ.
0: अच्छा कबाब.

0: जाए, उसके बाद उसको निकाल कर उसको मिक्सी में पीस लेंगे।
1: अच्छा, ये जो आपने इसमें गरम मसाला इस्तेमाल किया वो खड़ा गरम मसाला
0: हाँ, खड़ा
1: था?
0: मसाला, थोड़े थोड़े गर्म मसाले डालें जिससे उनका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है,
1: जी,
0: उनकी जो खुशबू है वो ज्यादा अच्छी पता चलती
1: ज्यादा
0: है।
1: अच्छी पता चलती। और फिर हमने उसको मिक्सी में डाल के,
0: मिक्सी में डाल के जब वो हमने बॉयल करा, उसके बाद वो क्योंकि इतना पानी हम डालते हैं कि उसी में मिल जाए,
1: जी,
0: ज्यादा पानी डालेंगे तो वो बहता हुआ हो जाएगा, वो नहीं होगा, बस उतना पानी है जिसमें मिल जाए।
1: अच्छा, चने की दाल और जो बरी हमने ली थी सोयाबीन की,
0: हाँ,
1: वो दोनों ही हमने
0: दोनों ही बॉयल
1: चार
0: करेंगे,
1: पांच सीटी
0: चार पांच
1: लगानी
0: सीटी
1: है।
0: बॉयल करेंगे।
1: अच्छा
0: उसको बॉयल करने के, जब वो ठंडा हो जाए उसको मिक्सी में चला दीजिए,
1: ठीक है।
0: और चलाने के बाद उसको निकालेंगे, उसमें थोड़ा सा बेसन, 2 चम्मच बेसन डाल दीजिए, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालते हैं, थोड़ा सा 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, और उसमें महीन महीन प्याज, हरी मिर्ची, अदरक और धनिया, ये सब डालकर उसको मिला लेते हैं, बाइंड करेंगे। अगर देखेंगे हम बाइंड करने में, अगर नहीं आ रहा है बाइंड करने में, तो हम ऐसे भी उन जो उसको रिफाइंड में कढ़ाई में रिफाइंड डालेंगे, और रिफाइंड डालने के बाद उसको हम उसी में चलाएंगे काफी, तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। उसके बाद उसकी अगर हम वो बनाते हैं,
1: लोई,
0: गोली गोली गोल लोई बनाते
1: लोई,
0: हैं, कबाब बनाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से सेट हो जाते हैं। और उनको फिर हम सेकते हैं, और लहसुन धनिया मिर्ची चटनी के साथ बढ़िया सर्व करिए, ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर
1: वाह।
0: दीजिए, बढ़िया।
1: अच्छा, इसमें आपने जो चटनी का इस्तेमाल किया, आपने कहा लहसुन धनिया की, तो वो आप कैसे बनाती हैं, थोड़ा सा उसके बारे
0: बस
1: में?
0: धनिया लहसुन, अगर हरा धनिया हरा लहसुन हो तो बहुत अच्छी चटनी बनती है, हरा धनिया। और आजकल फूल वाला जो धनिया आ रहा है, उसमें धनिया और लहसुन की एक आप एक ही बस वो डालेंगे, एक लहसुन का आप हरा वाला डाल दें, तो उसमें और हरी मिर्ची, जितना तीखा खाते हो तो ज्यादा मिर्ची डालिए, और कम तीखा खाते हो तो कम मिर्ची डालिए, और उसको मिक्सी में, मगर बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, जगह थोड़ी सी दरबरी दरबरी जो पिसती है ना, तो उसका स्वाद ज्यादा अच्छा आता
1: अच्छा, क्योंकि वो उसमें ना जो हमारा सिलुड़िया
0: है।
1: वाली
0: हाँ, थोड़ा फ्लेवर आ जाता है,
1: फ्लेवर आ जाता है
0: क्योंकि अब
1: वो।
0: महिलाएं मोस्टली कायल होने लगी हैं, इसलिए तो वो चलती
1: जी,
0: है मिक्सी। वैसे सिलबट्टे पे अगर पीसी जाए तो उसका मजा और अच्छा है।
1: बहुत ही अच्छा आता है। और खास तौर से हमने देखा है कि जब हम खेत पे जाते हैं और वहां पे ना तो हमारे पास क्या कहते हैं मिक्सी होती है, ना कुछ होती है, एक सिंपल सा पत्थर भी अगर रखा है और उसपे पीस के भी खाते हैं ना, तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, वो एक अलग ही चीज होती है। इसको बनाते समय जब आप कबाब बनाती हैं तो क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए?
0: बस पानी जो हमने करा है, वो कुकर में जो पानी रख रहे हैं उसको हम इतना रखेंगे, ज्यादा पानी नहीं रखेंगे। जनरली क्या है, लोगों ने डाला, एक कोन उठाया और 2 कप गिलास डाल दिया, नहीं, उसको जितनी चने की दाल है उतने ही अगर पानी डालेंगे तो उसी में हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर पानी सुखाने में मुझे बहुत समय,
1: अच्छा,
0: इसलिए
1: ये सावधानी
0: हाँ ये
1: रखनी
0: साथ।
1: है।
0: और बाइंड नहीं हो रहा है तो थोड़ा बेसन और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और मिलाकर हम उसको बाइंड करके उसकी टिकिया बना लेते हैं, तब बनेगा अच्छे से, नहीं तो
1: बिल्कुल,
0: बाइंड होने में दिक्कत होगी।
1: बिल्कुल। अच्छा मैम, थोड़ा सा और किचन की साफ सफाई की अगर जहां तक बात करें, तो उसमें कैसे क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है?
0: किचन की साफ सफाई हर खाने बनाने के बाद साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या है कि कीड़े हो जाना या बहुत चींटियां हो जाना, ये सब एक आम बात है। तो क्या है, विम का अगर वो है, या गर्म पानी से, अब सर्दियों में क्योंकि हम लोग घी का काम बहुत करते हैं, तो क्या है गर्म पानी से अगर किचन साफ करें, गर्म स्लैब उसकी, तो ज्यादा अच्छा साफ हो। और जो विम बार का लिक्विड वगैरह डाल के, विम का लिक्विड वगैरह डाल के तब साफ करेंगे स्लैब, तो ज्यादा अच्छा साफ हो।
1: अच्छा, एक चीज और इसमें याद आती है जो उन महिलाओं के लिए है, खास तौर से जो भूल जाती हैं कि रात को सिलेंडर से गैस नहीं बंद करती हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: नहीं, रात को गैस सिलेंडर बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी सावधानी दुर्घटना घटी वो स्थिति होती है, इसलिए रात में हमें अपना काम सारा खत्म करने के बाद गैस वगैरह साफ ऑफ कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गैस रेगुलर रूटीन में नहीं साफ करते हैं तो गैस से लीकेज की प्रॉब्लम होती है, और बर्नर जब खराब होते हैं तो गैस ज्यादा भी निकलती है उसमें से, वो होती है। इसलिए आप रात में काम करिए और बंद कर दीजिए, ये एक बहुत बड़ी सावधानी है।
1: जी, हम जो किचन साफ करने के लिए, या फिर यूं कहिए कि किचन के बर्तन जो हैं वो साफ करने के लिए जो एक कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं, उस कपड़े को हम कितनी बार धोना सही रहता है हमें? क्योंकि हम इस्तेमाल तो उसका सफाई के लिए करते हैं, लेकिन जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वही गंदा होता है,
0: हाँ ये होता है जनरली, हाँ ये
1: होता
0: होता है। और ये अच्छी बात है कि काम हो जाने के बाद उसको गर्म पानी से धोकर
1: है।
0: और अच्छे से साबुन से रगड़कर उसका उसका गंदगी निकालकर धोकर और निचोड़ कर डाल दें, जबकि अगले टाइम के लिए वो तैयार हो जाए, पता चला वो गंदा है, और अगर वही गंदा है तो फिर दोबारा
1: सफाई
0: फिर
1: क्या
0: जितनी
1: होगी?
0: सफाई करी है वो फिर वैसी गंदी है।
1: बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब हम किचन में काम करते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं खास तौर से, वो जिद करते हैं कि मम्मी हम भी साथ में रहेंगे, ये वो, तो तो क्या उनको किचन में रखना सही रहता है उस टाइम पे?

0: छोटे बच्चों को किचन में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कि हम किचन में कोई काम कर रहे हो और हम ही मुड़ते हैं और कोई चीज झटके से गिर गई तो बच्चे जल जाएगा बच्चा, या कुछ ऐसा हो कि हाथ पैर में लग जाए, इसलिए बच्चों को बिल्कुल किचन में दूर रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे कबाब हमें बनाने बताए, साथ में किचन से जुड़ी हुई भी बातचीत बताई है हमें कि साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना चाहिए, सिलेंडर को हमेशा काम खत्म होने के बाद बंद कर देना चाहिए। इसके बाद कुछ और संदेश अगर आप हमारी जो महिलाएं हैं, क्योंकि आपको ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ज्यादा सुन रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: हम तो यही कहेंगे कि आजकल जो सब सफाई से रहें, और वैसे तो मैंने देखा है गांव में जब लीपा पोती जो होती है वो बहुत अच्छा लगता है, जब काम
1: अच्छा।
0: वो वैसे भी वो करके और सफाई सुथरा से जब काम होता है किचन, वो जो चौका लगा हुआ होता है वो देखना बहुत अच्छा लगता है, साफ सुथरा और वो लीपा पोता हुआ है, चौक पूरी हुई है, वो जो है वो, इसलिए गाँव की महिलाओं से मेरा विशेष अनुरोध है, और आजकल जो चल रहा है कि जो अपनी सफाई पर, व्यक्तिगत सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, आसपास तो साफ रख रहे हैं मगर अपने आप को भी खुद साफ रखना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आप आगे देखें, कहने लगी वो आत्मा,
1: रहती अनपढ़ तो उस पर भी ना थी उजर,
0: मैं अनपढ़ भी बनी रहती तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे जिंदा तो रहने देते,

कहने लगी कि अगर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

अपना रेडियो अपनी बात है। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे हमारे सभी श्रोता साथी सभी सखियां सुन रही हैं कार्यक्रम अम्मा के चौके से। और अब अपन ने सखियों जानो है वो कबाब बनाबे की विधि की प्रकार की होत हैगी। और अपन जो बातचीत कर रहे थे भी मीनाक्षी जी अपने संगे हती। तो साथियों हम जाना थेंगे कि हमारी जो बहने हैंगी ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे शहरी क्षेत्र की हो सबके अंदर कोनू ना कोनू टैलेंट कूट कूट के भरो रहते है वो है ना कूट कूट के मतलब बहुत सारो टैलेंट रहते है वो लेकिन काहे कि उन्हें इतना हिचक रहेगी कि भैया हम कैसे बताएं सबके सामने कि कैसे का बना थे वो। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही में नहीं है काहे कि आप बलिया हमें फोन लगाओ और हम आपको बताएं बड़े आसान आसान तरीका से कि कैसे आप हमें अपनी विधि बता सकती है। जो अपना नंबर है वो जी पे हमारी सखियां फोन कर सकती हैंगी व्हाट्सएप कर सकती हैंगी। और साथ ही में अगर आपको हिचक कोनो हो रही हैगी बात करने में तो एक वॉइस मैसेज जो होते है वो आप हमें भेज सकती हैंगी। तो फिर क्या हुई है कि हम आपको इतने से फोन लगा के और आपसे बातचीत कर लेंगे कि अम्मा के चौके में आप कहा बताबो चाह रही है। देखो सबके पास अलग अलग आइडिया होते हैं जैसे मीनाक्षी जी ने अपन को किचन की साफ सफाई को लेकर कछु बातें बताई हैंगी। सो ऐसी ही बातें हमारी और भी बहनन के पास जरूर हुई है। तो बहनों देखो कत हैंगी ना कि अगर तालाब में पानी भरो रवे और वो पानी निकल ना पावे के तो वो बदबू देर लगत है गंदो हो जाते है वो। लेकिन वो पानी अगर बहत रहे एक दूसरे से मिलत रहे आगे बढ़त रहे तो वो अच्छो रहते है शुद्ध रहते है वो। तो कभी को मतलब है कि ज्ञान कितने को बांटो अपन कम नहीं होते। आपके पास कोनू टैलेंट अगर है वो खाना बनावे को बेहतरीन तरीका आपके पास है अगर कोनू रेसिपी आपको बहुत अच्छी आत हैगी। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो अपने बुंदेलखंड में ऐसी बहुत सारी पहले जो खाना बनाए जाते आज भी कितों कितों खत्म हो चले जा रहे हैंगे। तो अगर आपके मन में ऐसी कोनू विधि खटखटा रही हो तो आप हमें भी फोन के माध्यम से खटखटा सकती हैंगी और बता सकती हैंगी कि देखो और हमने जा विधि जानी हैगी और ये विधि से जो है हम अपने सब सखियन को बतावो चाहू थेंगे। तो आप हमें जरूर संपर्क कर सकती हैं। फिलहाल आपको बता देवे कि अभी कार्यक्रम अम्मा के चौके से जावे को हमारा समय हो रहा है वो। तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की अनुमति हमारी और आपकी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लाने खुश रहे मुस्कुरात रहे और सावधानी पूर्वक अपनों और अपने परिवार को ध्यान भी आपको रखने है वो। तो हम चला थेंगे नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस बार चूंकि किसान पर हमारे किसानों की जो फसल की बुवाई वो बहुत पीछे हो गई है और बहुत सारे किसानों ने वो भी नहीं पाई है, क्योंकि जून से लगातार इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण हमारे किसान साथियों ने अपने खेत में बहुत ही कम फसल लगाई है, जिससे हमारे किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है। और खुशी भी इस बात की होगी कि इस बार बारिश बहुत अत्यधिक होने से हमारे किसान साथियों के लिए फसल में काफी मुनाफा होगा। लेकिन क्या करें, ये मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, इसको कौन रोक सकता है? प्रकृति के साथ हम लोग जो निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, इससे बदलाव जो हो रहा है उससे जो खामियाजा हमें और आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, सभी को भुगतना पड़ रहा है। खैर, लेकिन एक पहल है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। इसी को लेकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मशरूम और खासतौर पर जो हमारे खेतों में उगाई जाने वाली चीजें रहती हैं उससे किस तरीके से जो फायर की जो कपड़े रहते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके का स्टार्टअप है ये, भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किस तरीके का स्टार्टअप, इसको हमें सीखना और समझना होगा, इससे किसानों की आर्थिक मदद होगी और नई चीज हमारे देश को मिलने जा रही है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा को।
1: ये जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं ये प्रोटेक्टिव अपैरल टेक्नोलॉजी है, जो डीप टेक भी है, नोवेल टेक भी है और ड्यूअल टेक भी है। तो ये हम बना रहे हैं मशरूम माइसीलियम से, और इसमें हम सस्टेनेबल इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल विच इज हाई परफॉर्मिंग वेयर, वो बना रहे हैं हम इससे। तो हम इसे मशरूम उगाते हैं हमारे माइसीलियम स्ट्रेन से, जो हमने प्रोक्योर किया है, हमने काफी स्टडी के बाद उसे ऑप्टिमाइज करा है, और फिर हम इसे ग्रो करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अभी हमने पहला आइट्रेशन बना लिया अपने फाइबर का। तो ये हम जो बनाते हैं ये एग्रीकल्चरल वेस्ट पे ग्रो करते हैं, तो इससे हमारे जो किसान हैं उन्हें भी आर्थिक मदद मिल जाती है, क्योंकि हम उन्हें कुछ पैसे दे के उनसे वो वेस्ट लेते हैं, जो वेस्ट वैसे वो जला देते हैं। तो उसकी वजह से आप सब्जी जानते हैं कि कितना AQI का दिक्कत हो रहा है दिल्ली में भी।
2: बिल्कुल, तो आपने कहा ये मशरूम माइसीलियम से तैयार किया जा रहा है, तो मशरूम माइसीलियम है क्या आखिर में?
1: तो जो भी फायर प्रोटेक्टिव अपैरल या प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब बाहर से आते हैं। तो हमें जो ये आइडिया आया था, मैं IIT दिल्ली में थी और उस वक्त मैं इमर्जन कर रही थी अपना, मैंने माइसीलियम को देखा और मुझे लगा इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टू मेक सम काइंड ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल, और वो बायोबेस्ड भी होगा, क्योंकि अभी जो भी बन रहा है वो सिंथेटिक फाइबर है विच इज ऑल्सो वेरी पॉल्यूटिंग एंड वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एज वेल एज आफ्टर दैट। तो हमने फिर माइसीलियम की प्रॉपर्टीज को देखते हुए उस पर काफी वर्क करा और हम फिर उसे उगा रहे हैं और उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम ये बना रहे हैं इससे भारत लीडरशिप, इट विल गेन अ लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिव वेयर अपैरल।
2: जी, तो आपने यहाँ पे सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट की भी बात की है, तो हम समझना चाहेंगे कि जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट है उससे कैसे बेहतर है ये?
1: पहली बात तो जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट फाइबर या अपैरल जो भी बनता है उसमें वो पेट्रोकेमिकल बेस्ड सिंथेसाइज होती है, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है इवन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप किसी भी सिंथेटिक फाइबर को उठा लें, जब वो बायोडिग्रेडेशन के लिए जाता है आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है, उससे जो वेस्ट होता है इट्स लाइक फॉरएवर फाइबर्स आर देयर लाइक पॉलिएस्टर एंड एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिग्रेड, तो वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है। तो हमारा सबसे मेजर जो USP है वो सस्टेनेबिलिटी है।

0: बायो फाइबर बना रहे हैं जो अभी तक बना हुआ है कहीं भी बाहर, क्योंकि इंडिया ने अभी नहीं बनाया है, वो सारे सिंथेटिक वेस्ट में बन रहे हैं। जो हम बना रहे हैं उसमें ग्रोथ के टाइम ही कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, और उसके बाद हम सिर्फ मेडिकल वेस्ट को छोड़ के बाकी सारा जो वेस्ट जनरेट होगा उसे बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी हमारे प्रोडक्शन में भी वेस्ट यूटिलाइजेशन है। और उसके अलावा हमारा पॉल्यूशन क्रिएट कम हो रहा है क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम डीपॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा। हालांकि हम थोड़े बहुत केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, पर हम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और वेस्ट को नेगेट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो नेगेटिंग इंपोर्ट रिलायंस।
1: कौन से प्रोसेस के तहत आप इस मशरूम माइसेडियम को यूज करके और किस तरह से क्या प्रोसेस है जैसे आप इसको तैयार कर रहे हैं?
0: हम जो मशरूम, जैसे हमने माइसीलिया मशरूम की जड़ होती है, जो फूडिंग बॉडी होती है जो हम कई बार खाने में इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो हम जो यूज कर रहे हैं स्ट्रेन्स वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर उससे हम सिर्फ उनकी जड़ उगा रहे हैं। तो हमने दो प्रोटोकॉल सेट करे हैं अभी, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। तो हमारी जो जड़ उग रही है फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक जब माइसीलियम की ग्रोथ हो जाती है जो हमने अचीव कर लिया 3 हफ्ते में हो जाती है हमारी, इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल। तो 3 हफ्ते के बाद जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं, और ये हम उगा रहे हैं उस माइसीलियम को एग्रीकल्चरल वेस्ट पे, तो उसे भी हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम प्रोक्योर करते हैं, उसे सॉर्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। वो एक तरह से हमारे माइसीलियम की ग्रोथ के लिए खाने का काम करता है, और उसके बाद हम जब माइसीलियम ग्रो हो जाता है उसे हम एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस फर्दर प्रोसेस करते हैं जो हमारा डिवाइस प्रोटोकॉल है उससे, एंड उससे फिर हम फाइबर बनाते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक बनाएंगे, और उसके बाद उससे किन्हीं प्रकार के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, फायर रिटार्डेंट, हाई परफॉर्मेंस वियर।
1: जी, तो आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि भारत जो है उसके पास खुद के फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स नहीं है, बाहर से खरीदने पड़ते हैं, तो किस तरह की समस्याएं जो है, मतलब ऑब्वियसली डिफेंस का मामला आ जाता है, तो डिफेंस में किस तरह से मददगार साबित होगा ये?
0: क्योंकि हमारे पास अभी सेटअप नहीं हुआ है, खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी की काबिलियत आई नहीं है, हम अभी प्रोक्योर कर रहे हैं, हमारे देश में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, पर हम अभी इस क्षेत्र में उतरे हैं, तो हम अब बनाना शुरू कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी इस रिगार्डिंग। तो हम जो बना रहे हैं वो हम पूरा खुद की क्षमता से बना रहे हैं, हम ग्रो भी खुद कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस भी खुद कर रहे हैं, तो हमारी रिलायंस बहुत कम हो गई है इवन कोई भी और प्रोडक्ट लेने के लिए, हमें कुछ भी बाहर से लेना ही पड़ रहा है, और ये हम नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया में भी बन रहा है तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइंस पे असेंबली हो रही है, हम उसके रॉ मटेरियल फिर भी बाहर से मंगा रहे हैं, देयर आर पार्ट्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे आर असेंबल्ड हियर। तो अभी इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी क्षमता नहीं है, हम उसे ही विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये बना लेंगे तो भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी क्षमता होगी, भारत एक लीडर होगा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी किसी ने बायोफाइबर बनाया नहीं है, बायोफाइबर विच हैज इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट कैपेबिलिटीज। तो जब हम ये बना लेंगे एक तो भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ऊपर हो जाएगा, एंड हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे उस चीज को, और हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आएगी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आएगी जो कि अभी नहीं है।
1: तो आपने बात की है कि फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स की, तो हमारे जो डिफेंस है उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि जब अगर हमारे यहाँ पे भारत में ये चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो किस तरह की जो चुनौतियां वो खत्म हो जाएंगी?
0: तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी पहली बात तो, और जो हमारा डिफेंस है वो सारा प्रोक्योरमेंट बाहर से हो रहा है, तो उससे फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो एक उसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता है, सो बेयरली 10% ऑफ द प्रोक्योरमेंट इट हैपेंस, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ जाता है। उसके अलावा सूट्स का वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम जो कोशिश कर रहे हैं हम उसको 50% से उसको लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये निर्भरता, टाइम की दिक्कत, इवन जो पैसा लग रहा है वो कम हो जाएगा क्योंकि हम इससे कम से कम 30% कम में दे पाएंगे इस प्रोडक्ट को, और ये सारी दिक्कतें सारी सॉर्ट हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो उसकी वजह से और कोई भी प्रोडक्ट कस्टमाइज करना हो तो वो हो सकता है।
1: तो जो एक फायर रिटार्डेंट होता है उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो अग्नि अवरोधक के तौर पर काम करे?
0: तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल दैट आर आउट देयर, उसमें वेस्ट्स हैं, कवरऑल्स हैं, सूट्स हैं। तो जो सूट का क्राइटेरिया है वो पहले बेसिक होता है, सूट होता है अप्रोच सूट, फिर होता है प्रॉक्सिमिटी सूट, फिर एंटी लेवल सूट, जिनकी फायर रिटार्डेंसी डिग्रीज होती हैं, तो वो डिग्रीज होती है 50 डिग्री से लेके वो 1200 तक जाती है फॉर एंट्री सूट। तो इसके और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कितनी दूरी से आप आग बुझाने जा रहे हो, कितनी देर तक उस आग में खड़े रह रहे हो, ये सारी पैरामीटर्स को देखते हुए जो हम बना रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड द डिग्री ऑफ फायर डिग्री दैट इज हैपनिंग ओवर देयर इन द फायर सिनेरियो, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ताकि इसकी बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी आए।

0: और जो हमारे अग्नि रक्षक जा रहे हैं आग में बचाने, उनको काफी सुविधा रहे और वो अच्छे से अपना काम कर पाए बिना खुद को हानि पहुंचाए।
1: वसुंधरा जी के एफर्ट्स हैं ये जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, अभी किन किन सेक्टर्स में और एक बड़ा बदलाव आएगा इस टेक्नोलॉजी से वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो क्योंकि अभी हम सिर्फ अपेरल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो फायर रिटार्डेंट है क्या हम इनको बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, बाकी जगहों पर भी यूज होता है क्या, वैसा भी जो आप बना रहे हैं एग्री वेस्ट से ऐसा भी कुछ आप तैयार कर रहे हैं?
0: जो हम बना रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस फायर प्रोटेक्टिव एयर है, विच इज प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बहुत सारे और भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि टाइल्स, रोड ब्लॉक्स, बायो ब्लॉक्स, फायर कर्टेंस, सीट, कार सीट कवर्स, इवन लिथियम आयन बैटरी जो एक्सप्लोड होने की जो कई केसेस आए हुए हैं उनके भी ऐसे कवरिंग दे सकते हैं जिससे कि वो रुक जाए, उस पर रोकथाम हो, वो नेगेट हो जाए। तो इसके सिर्फ फाइबर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, फायर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं। जैसे डिफेंस तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अलावा सिविल इंडस्ट्रीज में आप कोई सी भी सिविल इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर, मेटल, इन सब में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है फायर प्रोटेक्टिव सूट्स की, या वेस्ट के फॉर्म में, कवरऑल के फॉर्म में, प्रॉक्सिमिटी सूट्स के फॉर्म में, ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो ड्यूअल टेक्नोलॉजी भी है, तो सस्टेनेबल टेक्सटाइल भी एक इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका उपयोग भारत में सिर्फ डिफेंस में नहीं, अलग सिविल इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी इसकी रिक्वायरमेंट है, हर शिप पे 10 रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट ऐसे सूट्स की, और इसकी हर इंडस्ट्री में, डिफेंस से लेके सिविल इंडस्ट्री से लेके टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक इसकी रिक्वायरमेंट है।
1: वसुंधरा जी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है एग्री वेस्ट से आप इसको तैयार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं क्या उनको भी एक इससे बूस्ट मिलेगा?
0: तो हमारा जो ये हम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं इसका एक मंतव्य ये भी था कि हम जो हमारे लोएस्ट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे जो फार्मर्स हैं उनको भी इससे कुछ संभावनाएं उत्पन्न हो, क्योंकि हमारे फार्मर्स को एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की बहुत जरूरत होती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है इससे। तो हम जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं इस माइसीलियम को उगाने के लिए अपनी प्रोसेस में, वो हमारा बायोमास है और उसके लिए हम उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड अ गुड कंपनसेशन फॉर अराउंड 1/10 ऑफ वेस्ट दैट वी विल हैव टू प्रोक्योर, तो इससे उनकी भी आर्थिक सहायता होती है और उनके जो वो, क्योंकि उनके लिए वैसे भी वेस्ट है जिसको वो जला देते हैं जिससे कि AQI बढ़ता है और पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो उनको एक ऐसी आर्थिक सहायता मिलती है जो उनके लिए वेस्ट है उस चीज को बेच के हमें।
1: यहाँ पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का बायोमास आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं?
0: तो जो हम बायोमास उगा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल वेस्ट पे उगा रहे हैं, बायोमास हमारा मशरूम माइसीलियम है, हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी कभी कभी बायोमास मिला देते हैं, तो हम इसमें ज्यादातर पराली और भी कई प्रकार के एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ मिल वेस्ट भी यूज करते हैं जो कि हम इन सब का एक मिश्रण बना के, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी एग्री वेस्ट की होती है उसको बना के फिर उसमें हम अपने मशरूम माइसीलियम को उगाते हैं।
1: क्योंकि यहाँ पर आपके बताने से समझ में आता है कि काफी सारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो कम होते नजर आते हैं, तो जो हमारा नेशनल क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में किस तरह से हेल्प करेगी ये टेक्नोलॉजी?
0: तो जैसे हमारा ध्येय यही है, इस पूरे प्रोडक्शन में भी हम चाह रहे हैं कि हर जगह सबसे कम वेस्ट उत्पन्न करें, और जो हम पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में हम उसे भी कम करना चाहते हैं। तो जो इंडिया के क्लाइमेट गोल्स हैं जिसके तहत वो पॉल्यूशन और वेस्ट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो जो हम एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोक्योर कर रहे हैं उससे वो कम हो रहा है, जब वो जल नहीं रहा है तो उसकी वजह से AQI भी कम हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, और जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाते हैं तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया जो वेस्ट उत्पन्न होता है वो हम बायोफर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेच सकते हैं और वो उसे खाद के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं बिकॉज उसका यूज नहीं कर सकते, वो बायोहजार्ड होता है। उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारी उसमें GHG एमिशन नहीं हो रहा है, रादर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेक्वेस्टर कर रहे हैं, तो उससे भी एक जो एनवायरमेंट को हानि होती है वो नहीं हो रही है, तो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही सस्टेनेबल है। उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं क्योंकि वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी सस्टेनेबल हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा है कि लैंडफिल बहुत क्रिएट हो रहे हैं और वो डिग्रेड नहीं होते हैं, तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे जब डिस्कार्ड होगा या हम उसे रिसाइकल करके, क्योंकि वो कभी तो डिस्कार्ड होगा तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा, तो एक वो भी वेस्ट मिटिगेट होगा और पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जहां भी वेस्ट होता है वहां पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, दे गो हैंड इन हैंड। और इसके अलावा हम UN की SDG गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उससे भी अलाइंड हैं, 12 हमारा मेजर गोल है विच इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन। उसके अलावा हम बहुत सारे और गोल्स से भी अलाइंड हैं, इंक्लूसिव हायरिंग, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, वाटर रिलेटेड भी जो गोल्स हैं, तो हम लगभग 10 से

0: हमारा गोल से अलाइंड है, लेकिन यूएन एसडीजी 12 जो है वो हमारा सबसे मेजर गोल है, क्योंकि हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कर रहे हैं।
1: तो आपकी जो फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव अपैरल की टेक्नोलॉजी है बहुत सारे सेक्टर्स में काम आने वाली है, इससे जो भारत है वो आत्मनिर्भर होने वाला है। लेकिन जहां तक हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आप इसको बायोमास से तैयार कर रही हैं मशरूम माइसेलियम को, तो जो स्केलेबिलिटी है वो कैसे आप इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई कैसे आप देंगी मार्केट में इसकी?
0: तो आपने सही कहा, इसकी हर सेगमेंट में रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हर सेगमेंट में फायर प्रोटेक्टिव हाई परफॉर्मेंस वेयर जो है वो यूज होते हैं। तो हमें जो स्केलेबिलिटी, अभी हम लैब स्केल पे हैं, हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे। जैसे ही हम एक फेज कंप्लीट कर लेते हैं, हमने माइलस्टोन्स और टारगेट सेट करे हुए हैं, जैसे फाइबर हमारा पहला स्टेज है, फिर हमारा फैब्रिक आता है, फिर उससे जो भी एंड प्रोडक्ट हम बना सकते हैं वो बनेंगे। हर स्टेज पे हम गवर्नमेंट की मदद से और इवन प्राइवेट फंडिंग की मदद से हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे, एंड वी विल एक्सपैंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डिमांड जो भी हमें आएगी, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है। तो जैसे जैसे हम एक एक पद आगे बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से हम सेटअप करते जाएंगे अपना और बढ़ाते जाएंगे, ताकि हम जो भी डिमांड है उसको मीट करने की कैपेबिलिटी उत्पन्न कर सकें।
1: जैसे मशरूम माइसेलियम है, अभी आप इसको खुद लैब में ही तैयार कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी का यूसेज नजर आता है उस हिसाब से आपको लगता है कि लैब में ही रह के इतना जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है, या आप इसमें आगे जो फार्मर्स हैं उनकी भी मदद लेंगे?
0: अभी हम लैब स्केल पे ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट भी उतनी है और अभी हमें R&D करना है बहुत हद तक। लेकिन जब हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, और उसमें ऑब्वियसली लैब स्केल पे वो क्षमता नहीं है जो कमर्शियलाइजेशन के लिए हमें चाहिए होगी। तो हम हर स्टेप पे नया प्रोडक्ट एक्सपेंशन करेंगे, नया सेटअप करेंगे, जैसे जैसे हमें लगेगा कि अब हमें बढ़ने की जरूरत है, उस टाइम पे हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे। और इसमें हम जितना बढ़ेंगे हम उतने ही लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की हमें भी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पर हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी अगर किसानों की हमें जरूरत है, हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं, उन्हें भी जॉब दे सकते हैं। जब हमारी वो क्षमता होगी कि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ के उनका भी लाइवलीहुड बेटर कर सकें, तो हम ऑब्वियसली वो करेंगे। वैसे भी हमारा प्लान है अंडर मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोगों को अपने यहाँ पे जॉब देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का, उन्हें हो सके तो स्किल करने का, ताकि वो आगे चल के अगर वो हमारे साथ भी ना काम करना चाहें तो उनके पास एक ऐसी स्किल हो जो वो कहीं आगे चल के इस्तेमाल करें, और कहीं और उन्हें किसी आर्थिक तौर पर उन्हें जॉब भी मिल सके जिससे उनकी और आर्थिक सहायता होगी। तो जितना हम बढ़ेंगे हम लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे, हम दूसरी इंडस्ट्री से सभी कोलैबोरेट करेंगे और हम बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे, जिससे कि हम एक इकोसिस्टम बना सके जहां पे सभी थ्राइव कर रहे हो साथ में।
1: अभी तो ये लैब स्केल पे है, लेकिन आगे जब आप मार्केट में आएंगे तो आपने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है कि किस तरह से आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे? और क्या सिर्फ भारत के लिए ही एक बड़ी उपलब्धि है या इसकी ग्लोबली भी डिमांड रहेगी?
0: हमने इसे आगे ले जाने का प्लान तो करा हुआ है, हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी हुई है, जैसे हमारा जो फाइबर बन जाता है तो हम उसको कैसे मार्केट में लेके जाएंगे, फिर हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल को भी टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा फाइबर सस्टेनेबल होगा, इनहेरेंटली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होगा, तो उसकी ये भी कुछ काबिलियत है जो हम किसी और प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा, जैसे हमने पहला एट्रेशन कर लिया है फाइबर का, अब हमारा पहला टारगेट है फैब्रिक बनाने का। जैसे ये दोनों चीजें बन जाएंगी, दोनों ही फाइबर और फैब्रिक की डिमांड है मार्केट में, तो ये दोनों चीजें फिर हम उससे बिजनेस एसोसिएट से अपना कोलैबोरेशन करेंगे, एंड वी विल सेल आउट दैट। और इसके अलावा फिर हम डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज डिफेंस में बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज सस्टेनेबल। जैसे आप यूरोप वगैरह को देख लें तो वो कार्बन क्रेडिट्स भी दे रहे हैं अपनी कंपनीज को, जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन या सस्टेनेबल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो हमारा बाहर भी बहुत स्कोप है, क्योंकि ये तो नई टेक्नोलॉजी है, और अभी हमें जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं वो काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हुए हैं इसकी फंक्शनैलिटी को लेकर। तो जितना भी मार्केट है, इट्स अ ट्रिलियन डॉलर मार्केट सिर्फ डिफेंस और सिविल इंडस्ट्रीज का फायर रिटार्डेंट में, उसे हम बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हैं, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है। सिंथेटिक से पीपल वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स सस्टेनेबल बायोफैब्रिक्स, और अब बायोफैब्रिक्स में ऐसी कोई कैपेबिलिटी लाना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो क्योंकि ये 360 डिग्री इसका इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो पीपल आर विलिंग टू मूव टूवर्ड्स दैट। उसके अलावा हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इनहेरेंट है, तो उसकी वजह से कई चीजें और भी हैं और कई लोग और भी हैं जो ऐसी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज को प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो इसका हम बाद में एक्सपोर्ट के लिए भी हम जाएंगे, पहले हम इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देंगे, हम पहले अपने फुटस्टेप्स एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे, और फिर हमें जो भी

0: ऑर्डर्स मिले हैं उनको पूरा करेंगे एंड देन व्हेन वी हैव द कैपेबिलिटी वी विल ऑफ कोर्स गो फॉर एक्सपोर्ट बिकॉज वी शुड टारगेट एवरी रेवेन्यू एरिया एंड वी शुड मेक आवर प्रोडक्ट ग्लोबल. हम अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे कभी भी और इसमें हमारा भारतीय सरकार भी बहुत सहयोग करेगी जो हमें आईडेक्स से जो के साथ मिलकर जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उनका भी यही है कि हम आगे जाके हम जितना बढ़ सकें क्योंकि ये भारत सरकार का भी के लिए भी एक नई चीज होगी और उनके लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज सिद्ध होगी.
1: न सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये हितकारी है क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है और अभी तक आई नहीं है वो आपने ईजाद की है
0: तो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही हम शुरू कर पाए हैं. तो भारत सरकार की ये जितनी नीतियां हैं आत्मनिर्भरता मेक इन इंडिया और जो उन्होंने आईडेक्स एस्टैब्लिश करा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है वो डिफेंस इनोवेशन को आगे बढ़ाता है भारत में. तो उसके अंतर्गत बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि स्टार्टअप के पास कभी खुद का पैसा नहीं होता है. ये बहुत कम ही होगा कि किसी के पास खुद का पैसा है वो शुरू कर पाए. तो भारतीय सरकार सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है कि ये आप लोग कुछ जीते, वो इवन ग्रांट्स देती है. अगर हमारे पास कुछ आइडिया है तो उसे सपोर्ट मिलता है. तो हमने जितना भी अभी तक जो भी हम पहुंच पाए हैं इस एक साल के अंदर वो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही पहुंच पाए हैं. हमें काफी सहायता आर्थिक सहायता मिली है उससे. इवन हम जो इंक्यूबेटेड है अभी IIT कानपुर में उनसे भी हमें बहुत सहायता मिली है. ये भी इसी कारण हुआ क्योंकि हम आईडेक्स के साथ थे और उसके थ्रू हम पार्टनर इंक्यूबेटर IIT कानपुर को बना पाए जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है और उनके द्वारा भी हमें बहुत सहायता मिली है. उनसे भी हमें कुछ ग्रांट्स उपलब्ध हुए हैं और उनसे भी हमें टेस्टिंग की सबसे ज्यादा सहायता मिल रही है क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं R&D बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पर रिलाई करता है और क्योंकि हम एकदम नई टेक्नोलॉजी कुछ बना रहे हैं तो हमें इस चीज के लिए बहुत सारे टेस्ट करने हैं जो हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पा रहे थे. लेकिन IIT कानपुर ने हमें इसमें बहुत सहायता करी तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 90% टेस्ट हमने करवाए हैं वो आधे से ज्यादा हमने IIT कानपुर से करवाए हैं और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है टाइम अवेलेबिलिटी में भी और किन्हीं तरीकों से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है हमें IIT कानपुर के द्वारा. तो मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट से हमें बहुत सपोर्ट है लेकिन आगे चल के भी क्योंकि R&D जब तक हम सैम्पलिंग पूरी कर लें पहला MVP बना लें तब तक विच इज मिनिमम वायबल प्रोटोटाइप जो पहला फंक्शनल प्रोटोटाइप होगा तब तक हम चाहते हैं भारत सरकार के द्वारा हमें थोड़ी और सहायता मिले और थोड़ा और सपोर्ट मिले और इंकरेजमेंट मिले. तो हम और भी चीजों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना भी हमारा कनेक्ट होगा और जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उससे हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से हम खुद सक्षम हो जाएं.
1: तो सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा ये स्टार्टअप?
0: देखिए जैसे कि मैंने बताया ये सारा हम एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं फिर वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं उससे हमारा मशरूम ग्रोथ हो रहा है. फिर हम बाद में जब ये प्रोडक्ट देंगे तो हम ये भी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश करेंगे कि पहला या दूसरा रिसाइकलिंग जो भी हो वो हमारे पास वापस आए उसके बाद हम उसको वेस्ट में डालें जिससे कि वो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाए. तो ये पूरा ही सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है कि हम वेस्ट भी यूज कर रहे हैं या फिर वी आर टेकिंग सम वेस्ट वी आर अपसाइकलिंग इट और रिसाइकलिंग इट एंड मेकिंग इट इनटू अ मोर हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट जिसकी एक्सपोर्ट में भी रिक्वायरमेंट है. मतलब अगर आप जैसे वेस्ट की बात करें वो 10 रुपए किलो मिल जाता है हमें 7 से 10 रुपए किलो के बीच में. अब हम उसको यूज करके हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसकी जिसका पैसा ही लाखों में जाएगा जो बिक रहा होगा कुछ लाख में एक प्रोडक्ट. तो ये इतना हाई वैल्यूएशन जो हो जा रहा है वो हम उसको वेस्ट को प्रोसेस करके कर पा रहे हैं. तो ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है. तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा सर्कुलर इकोनॉमी पे.
1: तो अगर मैं आपसे आपको विजन और मिशन जानना चाहूं तो वो क्या लेकर चल रही है?
0: तो जैसे हमारा विजन जो है और विजन लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो अनरियलिस्टिक लगे पर क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होगा तभी हम एक ऐसी जगह सोच रहे हैं जहां कोई और ना जा पा रहा हो. तो हमारा विजन ये है कि हम इंडिया को ऐसी प्रौद्योगिक क्षमता दें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में और वो सस्टेनेबल हो और दुनिया भी उससे प्रभावित हो और अभी जितने भी सिंथेटिक चीजों से चीजें बन रही हैं वो बायो बेस्ड हो जाएं और हमारे भारत के पास इतनी क्षमता हो कि वो टेक्नोलॉजी लीडर बन जाए इस चीज में. और हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बायो फैब्रिक्स जो हाई परफॉर्मेंस वेयर है उसके सबसे बड़े लीडर बने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में क्योंकि हम लगातार टेक्नोलॉजी इनोवेट करेंगे. हमारा USP यही है और हमारा मिशन ये है कि हम जितना जल्दी हो सके एक स्टेज तक पहुंच सके जहां पे हम दिखा सके कि अब ये सब कुछ हो गया है अब बस हमें जग जीतने की देरी है.
1: और आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: जैसे कि सभी जानते होंगे कि स्टार्टअप करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है इतना आसान नहीं होता. तो मैं ये कहना चाहूंगी अगर आप में थोड़ी भी लगन है कोई भी आइडिया है जो आपको लगता है कि हमारे देश की उससे उन्नत होगी उसकी मदद होगी लोगों की सहायता होगी तो मैं ये कहना चाहूंगी कभी ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता. आप एक बार उसको दिल में ठान लीजिए उसको लेके आगे बढ़िए वो अवश्य होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें उसका फल

0: तो कभी ना मिले, पर मेहनत करना जरूरी है। अगर आपने कहीं भी ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो कि कुछ नया है, जिससे कई लोगों को बहुत लाभ होगा, हमारे देश को बहुत लाभ होगा, उसकी उन्नति होगी, तो मैं आग्रह करूंगी कि आप सब अगर मुझे देख रहे हैं तो ये चीज करें, क्योंकि हमारे भारत को अभी सब चीजों की बहुत जरूरत है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, और ये सब आप सबकी की मदद से ही हो सकता है।
1: और मैं यही कहूंगी कि जो देश की रक्षा है वो सिर्फ सीमा पर लड़कर नहीं की जाती, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी, जैसे वसुंधरा जी की टेक्नोलॉजी, और ये इतना सोच रही है कि देश को किस चीज की जरूरत है, जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ी देश सेवा है। वसुंधरा जी, आप अपने मिशन और विशन में जल्दी से कामयाब हो, हम यही दुआ करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने इस चर्चा को सुना, और इस चर्चा को जो चूंकि हमने कार्यक्रम जो उठाया है वो हमारी डीडी किसान से हमने इस कार्यक्रम को लिया गया है, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि इस तरीके की जानकारी उनके सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने की हम लोग जो पहल कर रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचेगी, किसान साथियों तक पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो इसका उनको लाभ मिलेगा। वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे इस पते पर। पता है हमारा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। फोन नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

बुंदेली नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुने थे, विधा को आनंद ले थे। यही क्रम में आज विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन मिले भैया प्रकाश कुशवाहा जी से, जो गुंदरई के रहवाए हैं। और उनसे जाने के आपने जो विधाएं कहाँ से सीखी हैं और आपने कहाँ कहाँ गाँव है, ये सब बातें अपन प्रकाश भैया से करें और उनसे जानकारी अपन जान बचाए। सो यही के संगे संगे अपन प्रकाश भैया जी से मिलवे से पहला एक बढ़िया से गीत को सुनत, गीत को आनंद लेत, और फिर ये गीत के बाद अपन प्रकाश भैया से बात आगे करें। तो कहे ना अपन प्रकाशी भैया के गाय भय गीत को अपन सुन लेते हैं। सो आप सुनते ही गीत को जिया गा रहे हैं प्रकाश भैया जी।

0: बिल्कुल दोस्तों, अभिमान त्याग देना जो तुझ में समाया है। देखो कितना बढ़िया गीत अपन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। गीत को गा रहे थे भैया प्रकाश चंद कुशवाहा जी। अब आज दोस्तों प्रकाश चंद जी से आगे बात और करते हैं कि आपने कहाँ से सीखी है और कैसे जब विधाएं सीखी हैं। सो आप मिलते हैं प्रकाश भैया जी से। अच्छा प्रकाश भैया, जा बात बताओ कि बात करें अपन गावे बजावे की, तो आपने जो गावो कैसे सीखो?
1: भैया हम तो छोटे रहते जब सुगावन में राम सभा होती।
0: अच्छा,
1: महीना भर में कहो एक दिन बैठ जाए, कहो महीना भर में दो बार बैठ जाए, और कहो हफ्ता में एक बार बैठ जाए।
0: अच्छा, तो राम सभा में बैठे,
1: राम सभा में जाऊ।
0: अच्छा, इसके अलावा आपने कहा गुरु बनाओ तो कैसे?
1: नहीं, हमने गुरु बनाओ तो भैया

0: रंगीला साहब हते।
1: अच्छा रंगीला।
0: हाँ रंगीला।
1: ये कहाँ के हते रंगीला?
0: झांसी के हते।
1: हाँ
0: तो आज भी हैं।
1: अच्छा उनका रंगीला नाम कौन नाम से जाना तूने?
0: रंगीला रंगी राही।
1: रंगी राही।
0: हाँ रंगीला साहब बोला तूने।
1: हाँ
0: कुशवाहा जी है
1: तो उनसे आपने सीखी।
0: हाँ,
1: अच्छा उनने आपको क्या चीज बताई थी सबसे पहले के कौन हिसाब से आपने गुरु मानो तो उन्हें?
0: अब जो मानो तो क्या बहुत अच्छा लिखा था थे।
1: अच्छा लिखा था थे वे?
0: हाँ, लेखक है।
1: हाँ,
0: तो उनकी लेखनी पे हम लोगों ने गाओ थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा लगा।
1: हाँ,
0: और उनकी वातावरण अच्छा लगा।
1: हाँ,
0: इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा गा वो सीख गए।
1: बिल्कुल सही बात है। जब आपने देखो लेखनी की बात कही तो आप जो बता पाए कि आपने उनकी सबसे पहली लेखनी कहती बात जो उन्हें लिख के आपको दी थी कि आपने गाई हो उनकी लिखी बची
0: देखो
1: कहा गाओ तो आपने ऐसो
0: अब देखो उन्हें एक बहुत पहले एक चीज लिखी थी शुरुआत में।
1: हाँ
0: एक बुंदेलखंड की चीज लिखी थी।
1: हाँ
0: रंगीला साहब आते हुए।
1: हाँ
0: और वे लिखते अपने अब भजन कीर्तन है। हाँ, सब चीजें हैं।
1: हाँ,
0: तो भजन भी लिखते वे लोकगीत भी लिखते।
1: हाँ,
0: अबे भी लिखत भी
1: अबे भी लिखत
0: अबे भी लिखत हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन अब बहुत
1: अच्छा आपने उनसे संपर्क कब से नहीं करो आपकी मुलाकात उनसे कब से नहीं हुई?
0: अभी हमारी कम से कम 5-6 साल से
1: 5-6 साल से उनसे संपर्क नहीं
0: हो पाया है।
1: अच्छा तो आपने उनकी का चीज गाई का आपको है ध्यान के कौन चीज आपने गाई?
0: अब कैसे अभी याद नहीं है उसमें।
1: हाँ तो उनने कई चीजें ऐसी आपको
0: गाई है लिख रही है। पार्टी भी हम लोगों की बनी है।
1: अच्छा।
0: हाँ मंडल भी है।
1: अच्छा मंडल भी।
0: मंडल भी है।
1: तो आपने कभी रेडियो बुंदेलखंड पे गाओ?
0: हाँ गाया है हमने रेडियो बुंदेलखंड पे गाया है।
1: तो भी जो रेडियो बुंदेलखंड पे आपने गीत गाए वे उन्हीं के लिखे गाए या फिर कछु अपने और कवियन के हैं?
0: नहीं उन्हीं के लिखे गाए हमने।
1: अच्छा उन्हीं के लिखे गाए।
0: साहब के लिखे गाए।
1: अच्छा।
0: हाँ
1: तो आपने कछु जो गाओ थे रेडियो बुंदेलखंड पे उनको तंतुरे याद है कि हमने का चीज गाई तू थे?
0: हाँ हमने एक वो गाई थी उनका थोड़ा सा एक गजल थी।
1: हाँ
0: अभिमान त्याग देना।
1: अच्छा
0: एक गजल गाई थी हमने वो बहुत शुरुआत में गाई थी हमने आज कम से कम 6-7 साल पहले।
1: हाँ
0: तो थोड़ा सा याद है कि अभिमान त्याग देना तुझ में जो समाया है।
1: हाँ
0: और हंसा की चाल भैया कभी चल नहीं पाया है।
1: हाँ
0: हंसा की चाल कौआ कभी चल नहीं पाया है। अभिमान त्याग देना तुझ में जो समाया है वो हंसा की चाल कौआ कभी चल नहीं पाया ये चीज गाई थी
1: आपने ये चीज गाई।
0: हाँ।
1: अच्छा जब से आपने उतर से गाबो छोड़ो मतलब जब उतर रिकॉर्डिंग करे आए थे उके अलावा फिर बैठे आप कहो मंडल में सभा में के?
0: नहीं हम जब से वहाँ से छोड़ा सो हम लोग बैठ ही नहीं पाए है।
1: हाँ।
0: अपने काम में बिजी है बच्चे हो गए हैं तो थोड़ा गाओ बजाओ कम हो गया।
1: सही है अब गेस्ट जीवन में
0: समस्याओं से बहुत जूझना पड़ रहा है।
1: सही बात है
0: क्योंकि कुछ है नहीं अपने पास में जाएगा जमीन नहीं है।
1: हाँ सही बात है
0: तो अपन तो मजबूरी कर रहे हैं और पाल रहे हैं।
1: सही बात है चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक संगे संगे जो गावो बजावो है इसे मनुष्य के जो जीवन है इस पे क्या प्रभाव पड़ती है गाय से?
0: एक जो पुरानी इतिहास याद आते हैं कि हम पहले कैसे थे।
1: हाँ
0: आज क्या है हम लोग।
1: सही बात है
0: भाई गाने बजाने की एक जो परंपरा है।
1: हाँ
0: बुंदेली भाषाएं हैं।
1: हाँ
0: इनमें सारी भाषाओं का कीर्तन भजन होते हैं।
1: हाँ।
0: तो एक यही है कि हम लोग एक इतिहास को उठा लें अपना कि कोई इतिहास ही से गाया जाता है।
1: हाँ, सही बात कह रहे इतिहास से भी गाया जाता है।
0: तो आज पुराना इतिहास को उठा के देखें अपन। हाँ। तो पुराने इतिहास में बहुत कुछ मिल रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है
0: और अब पुराने इतिहास तक कौन जा पा रहा है?
1: सही बात
0: अब नए अपने अपने बना रहे हैं
1: और नए पुराने इतिहास को तोड़ मरोड़ के
0: नए नए
1: तरीका से बना
0: नए नए तरीका से बना रहे
2: कट पीस में आने लगे।
1: हाँ कट पीस में आने लगे सही बात कह रहे हैं आप
2: न तो संगीत और गायन टूटे हुए हृदय की औषधि है।
1: हाँ टूटे हुए हृदय की औषधि है सही बात कह रहे और गावे बजावे से अपन को जो अपनो शरीर है या फिर
2: उमंग
1: पैदा होते ही
2: शक्ति संचार पैदा हो शक्ति को संचार पैदा हो
1: शक्ति को संचार पैदा होते ही
2: गावे से।
1: चलो बहुत अच्छी बात है और जो नहीं होत के अगर अपन भक्ति में हो जाए या फिर गावे में उतर जाए तो अपनों को सब दुख भूल जाते
2: हैं। हाँ? सही बात है कि जब आदमी
1: गावे में
2: कीर्तन पे आ जाता है तो हाँ? वो सारी चीजें छोड़ देता
1: हाँ?
2: है क्योंकि उसको सतता ही उसमें दिखाई देती है।
1: बिल्कुल
2: कि अच्छा और बुरा क्या है तो अपने आप नियमों का पालन करने लगता है।
1: सही बात है तो इसके अलावा आपने और कछु सीखो कभू ऐसे जैसे क्यों पार्टी में गए हो कभू आपकी आमने सामने जवाबी कीर्तन में गए हो?
0: जवाबी वावी ना लड़ते हैं ना आज तक कोई गाया है।
1: अच्छा आपने जवाबी में नहीं गाओ?
0: नहीं नहीं नहीं हम नहीं गाते हैं ना हमको हमने

0: सबसे बड़ी समस्या हमारे पास में यही रही है कि हमको इतना समय नहीं रहा है और ना तो हम इतना गा पाते हैं।
1: सही है,
0: थोड़ा बहुत बहुत तो हमारे माता दीन भैया आ जाते हैं सो हमने बोल दिया है।
1: चलो बहुत अच्छी बात। वो कहावत भी नहीं है कि अगर मन में है होलक
0: तो खंजड़ी का ढोलक।
1: हाँ है क्या नहीं? सही बात है, अगर मन में होलक है तो ना खंजड़ी चाने ना ढोलक चाने, अपने गुनगुना लेते हैं।
0: पहले की परंपरा में सवेरे 5 बजे जनी मान से उठ जाऊते।
1: हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
0: ट्यूशन लगाती
1: हाँ
0: 5 बजे उठ के पीछ रही हूँ गावियों को बड़ा शौक है तो उस टाइम में।
1: हाँ बिल्कुल सही बात,
2: भी करो नहीं हो गावी रही
0: गा रही हूँ कम से कम भी 10-10 किलो पिसिया पीछे नहीं।
1: सही बात,
0: पूरे परिवार को चक्की पे कहूँ पिसावे ऑटो नहीं गई।
1: सही बात कह रहे हैं आप,
0: उनने अपने वही पिसा के
2: वो
0: गावे गावे में उन्हें 10 किलो गेहूँ पीस लो अपने मणि मणि को बना के खुआ दो।
1: सही बात,
0: लेकिन उन्हें जो शौक है तो हमें गाने हैं।
1: हाँ सुबह चकिया के बहाने गावी लेती
0: गावी लेती
1: और अपनों काम भी कर लेती है, सुबह परिवार के खावे को पीस लेती
2: बीमार नहीं होती
1: और गा लेती
0: है।
1: सही बात, कहा बीमार होने
0: हम क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं बीमार। आज देखो तुम तो 100-100 साल की बाई आज भी बैठी है।
1: हाँ सही कह रहे, सही कह रहे हैं,
0: बैठी
1: है
0: गा रही है खूब।
1: अच्छा प्रकाश भैया आपसे एक बात और जानना चाहे कि आपकी माता जी को कब हुआ आपने देखो गाउ सर?
0: नहीं हमारी माता जी ने खूब गाया है,
1: है?
0: आप तो बुढ़ी हो गई खैर।
1: नहीं आप तो बुढ़ी हो गए लेकिन जब भी अपने परिवार चला उठती अपने बाली बच्चन हो खुआ पिया उठती उस समय पे तो आपने देखो ही है कि माता जी पीस रहे गा रहे हैं।
0: खूब गाया उन्होंने, खूब उन्हें चक्की चलाई वो और गिया चलाई।
1: हाँ और आपकी शादी क्या साल की हती जब हो गई थी?
0: हमारी शादी करीब 30-32 साल की लगभग में गई भैया।
1: तो आपकी मैसेज को क्या नाम है?
0: हमारी मैसेज का नाम है जानकी देवी कुशवाहा।
1: जानकी देवी कुशवाहा।
0: हाँ।
1: अच्छा कहू जानकी देवी ने पीसो?
0: नहीं नहीं नहीं मिलो
1: उन्हें नहीं उन्हें नहीं मिलो। अच्छा जब चकियां नहीं हद बची थी पीसवे के लाके या फिर जे पीस के नहीं जानती या फिर
0: चकियां तो आज भी रखी?
1: चकियां तो आज भी रखी
0: लेकिन
1: लेकिन सुख सुविधाएं मिल गई इन्हें।
0: हाँ
1: जब पहला चक्की नहीं रखती थे गाँव पुरा में क्यों चक्की नहीं होती है? अब तो चक्की हर मोहल्ला में है, हर जगह है,
0: हर जगह चक्की हो गई है
1: और कछु ट्रैक्टर भाई चक्की चल गई घर जाके पीस
0: घर जाके पीस रही है भी।
1: तो आपकी ने सौंक न गावे को सौंक रहा हूँ ना पीस भी
0: बिल्कुल नहीं।
1: जब जिनने पीस हुई नहीं है तो गाँव कहाँ पे भी
0: अब बात तो मई ना पूरी।
1: हाँ
0: जब गाने का शौक हो जब तो वो पीसे।
1: सही बात है,
0: गाने का शौक नहीं है।
1: सही बात,
0: सब सुविधाएं दे रही है।
1: हाँ सब सुविधाएं हो गई। चलो बहुत अच्छी बात प्रकाश भैया आपने जब बताई और इनने कहूँ गाँव नहीं
0: भैया इनको नहीं मिला मौका।
1: चलो
0: ये गाने का मौका भी हर किसी को थोड़ी मिलता है।
1: सही बात है, सही बात,
0: जिसके अंदर एक लगन होती है कि हमको ये काम करना है।
1: सही बात,
0: कोई चीज सीखना है तब कोई उसको सीख पाता है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो फिर इन्हें वो भी नहीं मिलो सीख खिलाने, अगर भी चकिया चलत होती तो इन्हें परवस पीसने आओ तो और गाँव नहीं आते।
0: अनुभव तो सब है लेकिन अब आज का है कि आदमी शर्म अपनी शर्म के मारे जाता है।
1: हाँ सही बात कह रहे हैं आप,
0: करन नहीं चाहिए।
1: हाँ
0: आदमी को सब है।
1: हाँ, सही बात कह रहे हैं
0: सब करन चाहू।
1: हाँ
0: लेकिन अब शर्म लगा हर आदमी को।
1: हाँ
2: घर में अगर चक्की चले तो
0: अगर गा भी रही वे तो कहीं वो सुन ना ले। अरे का सुन नहीं ले?
1: सही बात है,
0: गाने हैं तो गावे में कुछ सुन ले।
1: कोई बात ही नहीं है, बूढ़ी पुरानी अपनी माताएं तो देखो 4 बजे रात से।
0: हमारी माता जी आज कम से कम 105 साल की हो गई है।
1: अच्छा
0: और आज भी उनसे हम कहें तो भैया तुमसे 10 बजे घुमा दें।
1: सही बात कह रहे हैं आप, सही बात कह रहे हैं आपके भी अभी भी गा सकते।
0: अभी गा दी तुम्हें।
1: चलो बहुत अच्छी बात है प्रकाश भैया आपने देखो इतनो कीमती समय निकाल के दवाई खिलाने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको भी।
3: देखो दोस्तों जैसे भैया प्रकाश चंद्र कुशवाहा जी और इनसे अपन ने बातचीत या करी है यही बातें की संगे संगे आप और कह रहे कि माता दिन भैया ब्लैक टाइम से प्रकाश भैया जी से बातें कर रहे हैं मनोरंजन की तरफ को ध्यान नहीं दे रहे। सो आप मनोरंजन के लाने एक बढ़िया से गीत को सुनत गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में और सुनते रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। आप सुन लेते हैं एक और बढ़िया से गीत खोल लेते हैं गीत को आनंद।

अंगना में बैठी चार गुनिया बता दो सखी अब कैसो करेंगे। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत खो गा रही थी पिस्ताजी। अब पिस्ताजी के गीत के बाद अपन को हम बता देंगे कि आज के कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दिन भैया को जावे को समय शो हो रहा है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर मुलाकात कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।

0: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: समय सुनवा तब के उतार दियो गगरी लाला दे होने के तुम्हारे के हमै सुनो
1: के गगरी तोरी भौजी जबई उतर है गगरी तोरी भौजी जबई

है हम सबको आनंदी भई है, हम सबको आनंदी भई है। जैसे अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे कुल को है।

के बहु देखो जी के लड़का बिटिया तुम्हें राम ने दई है हम सबको आनंद भैये ऐसे के रहे के गगरी उतार दिखाए

0: लेकिन हम के वो है, तुम कह रही के दो बहने हैं, हमें नेग में जो नहीं जाना मालूम का जाने क्या वो है।
1: प्राणन से प्यारी हो जाई, ध्यान से सुनियो बात हमारी, ध्यान से सुनियो बात हमारी, काद हो गगरी।

0: बिटिया अभी सब खुश रहे और दोनों कुलन की शान बढ़ावे, जो ही हमें एकदम से नेगे में जाने और कछुरे जाने और
1: अरे खुशी रहे जाना दुलारो कुल को है उजियारो

0: उतार दियो गगरी लाला दे होने गे तुम्हारे के हम आई सुनो
1: के गगरी तोरी भौजी जबई उतर है गगरी तोरी भौजी जबई

खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे कुल को है।

बहुत ख्वाब जी कह रहे लड़का बिटिया तुम्हें राम ने दई है हम सबको आनंद भइए ऐसे भी कह रहे के गगरी उतार दिखाए तुम जो

0: लेकिन हम के वो है तुम कह रही के दो बहने हैं हमें नेक में जो नहीं जाने मालूम का जाने क्या वो है
1: प्राणन से प्यारी हो जाई ध्यान से सुनियो बात हम आई ध्यान से सुनियो बात हम आई का

0: बिटिया अभी सब खुश रहे और दोनों को लड़की शान बढ़ावे जो ही है एकदम से नेगे बिचाने और कछुरे जाने और
1: अरे खुशी रहे जा राज दुलारो कुल को है उज

0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और जैसा कि श्रोता साथियों आप जानते हैं कि शुभ कल कार्यक्रम में हम विभिन्न प्रकार के विषयों पर हम चर्चा करते रहते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं राजेश जी, जो कि यहाँ पर आके उन्होंने बहुत सारे गांव में विजिट किया है। और खास तौर पर जब हमारे पानी बचत की बात आती है या क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि हमारे आप स्टूडियो में पहली बार आपने यहाँ पर आए हैं, तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर।
2: धन्यवाद
1: सर। जानना चाहेंगे आपसे कि जो क्लाइमेट यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे खास तौर पर खेती पर बहुत ज्यादा प्रभाव और खास तौर पर किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्या बातें हैं जो हमारे समुदाय के लिए बहुत जरूरी है, किस तरीके से हम जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको हम किस हद तक हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं सर?
2: सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया आपके इस रेडियो के माध्यम से। जहां तक आपने जो प्रश्न किया, बहुत आज की जो परिस्थितियां हैं और खासतौर पे बुंदेलखंड में जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रख करके देखें तो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर हम किसान भाइयों को सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। और उसकी जो मुख्य वजह है कि हम यदि कुल बारिश में देखें, यदि वर्षा का आंकड़ा देखें, तो कभी कभी हमको लगता है कि आंकड़ा तो कुछ और कह रहा है कि बारिश में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है जी। तो जहां तक कुछ सालों की जब रेनफॉल की आंकड़ों को देखें तो वो अंतर नजर नहीं आता। बट अंतर क्या है कि जब पानी की जरूरत है तब पानी नहीं गिर रहा है
1: जी।
2: और एक साथ पानी बहुत तेजी से गिर रहा है
1: जी।
2: तो जो हमारी फसलें हैं उसको समय समय पे पानी की जरूरत महसूस होती है। और असमय पानी का गिरना ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा सब सामना कर रहे हैं। और जो समय पे पानी नहीं गिरने की वजह से फसलों के जो प्रोडक्शन है, जितना उत्पादन होना चाहिए उस उत्पादन में भी कमी हो रही है। और कभी कभी तो पूरी पूरी जो हमारी फसल है वो पूरी फसल, और जैसे कि मैं अभी इस साल आया हूँ कि पानी की वजह से पहली फसल जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल लगभग 70-80% फसल इस साल हुई नहीं,
1: हुई नहीं।
2: उसका
1: नहीं।
2: सबसे बड़ा जो रीजन है कि इस साल अतिवृष्टि हो गई। तो पानी को जितना जिस जगह पे होना चाहिए थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, पर बहुत ज्यादा यदि कम या बहुत ज्यादा वर्षा जो है वो इस फसल के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। और यही वजह है कि हमारे किसान भाई इस साल, अभी मैं दो दिनों से आपके गांव में ही था खासतौर पे, तो पुरुष जो है वो सारे बाहर चले गए क्योंकि गांव में अभी कोई किसान होकर के भी किसानी का काम नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई फसल नहीं है
1: जी।
2: तो इस जो है ये बहुत बड़ा हमारे जो कृषि प्रधान देश के नाते, यदि किसानी का जब समय हमारा खरीफ की फसल को यदि हमारे इतना बड़ा क्षेत्र नहीं ले पाएगा तो सोचे कि आगे जाकर के जो हमारे अन्न की जितनी जरूरत है उसमें कितनी बड़ी। तो मेरा ये क्या मानना है ये दो दिनों के इसमें कि छोटे छोटे उपाय हैं जिनको यदि हम करें तो शायद ये जो गंभीर समस्याएं हमारे किसान भाई जो सामना कर रहे हैं तो उसमें मुख्य रूप से हमें ऐसी फसलें लगाने की जरूरत है जो कि बहुत कम वर्षा में भी सहन कर सके, और थोड़ी अतिवृष्टि होती है तब भी वो फसलें हमें, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे ज्वार
1: जी।
2: तो ज्वार एक ऐसी फसल है जो बहुत कम पानी होता है तब भी वो होती है
1: जी।
2: और सामान्य बारिश में तो वो अच्छी होती है, बट अतिवृष्टि के समय भी ज्वार की फसल, तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिसको कि हमें कुछ मात्रा में उसको भी हमें, तो दो तीन तरह की हम फसलें लें जिसमें हमारा जो उत्पादन है वो कभी भी ऐसी स्थिति ना हो कि हमारा उत्पादन ना आए। तो फसलों का चयन हम ऐसा करें जो इस तरह की। तो उसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो है हमें वाटरशेड के जो काम है, जो जल संरक्षण के कार्य है, उसको करने की भी हमको आवश्यकता है। और खास तौर पे जल संरक्षण में हमें दो तरह के उपाय, जैसे अभी आजकल अतिवृष्टि भी होने लगी है, तो हमें वो भी उपाय कर रहे हैं कि पानी को जब ज्यादा गिर जाए तो कैसे वो सुरक्षित हमारे खेत से बाहर निकल जाए, और जब पानी हमें कम चाहिए या जब मीडियम हमारी वर्षा हो रही है उस समय पानी को हम कैसे संरक्षण करके रखें, ताकि थोड़े कम समय का यदि उसमें अंतराल में पानी गिरता है तब भी हमारी फसल में जो मॉइस्चर है जमीन की उसी से उत्पादन में कोई फर्क ना पड़े। इसके अलावा भी और भी जो हमारे गांव की जितनी संरचना है उसको हम समय समय पे उसकी मिट्टी निकालते रहें, ताकि उसका जो हमारा पानी का जो स्टोरेज एरिया है, जो संग्रह क्षमता है, उसमें किसी तरह की कमी ना हो। साथ ही साथ हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, हमारे क्षेत्र में जो भी अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके साथ मिलकर के अच्छे से योजना बनाएं और उन योजनाओं में अधिकतर हम पानी को संग्रहित करने के काम को जोड़ें। और साथ ही साथ हम ये पूरा ध्यान रखें कि खेती में हम पूरा ये ध्यान रखें कि हमारे गांव में कितना पानी गिरता है, तो उस पानी के हिसाब से क्या हम फसल लगा रहे हैं। यदि पानी के हिसाब से नहीं है तो हमें क्या उपाय करने की जरूरत है, इस पे सोचने की जरूरत है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।
3: बिल्कुल राजेश जी, आपने बहुत ही हमारे श्रोताओं को, हमारे समुदाय के लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से विचार करने के लिए विमर्श कर दिया है कि किस तरीके से हमें अपनी खेती में बदलाव करना चाहेंगे। चूंकि आखिरी सवाल हमारे मन में चल रहा था, हमारी जिज्ञासा थी कि आपसे पूछे, चूंकि आप देश के कई जगह आपने भ्रमण किया है, बहुत सारी खेती में बदलाव देखे भी हुए, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में और हमारी सरकार भी कह रही है कि मोटे अनाज फिर से करना चाहिए, खेती में लाना चाहिए, आपका क्या मानना है कि इस क्षेत्र में किस तरीके से मोटे अनाज को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहिए, किस तरीके से वो मोटे अनाज पर जाएं?
2: बहुत बड़ा सवाल आपने रखा है, और अभी देखें कि पूरा स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा हमारा खान पान का संबंध है, और हमारे देश में ये जो मोटे अनाज की आपने सवाल किया
3: जी,
2: तो यही अनाज हम खा रहे थे, बट हमने ये बदलाव कब से शुरू किया, जब से हरित क्रांति इस देश में आया।
3: बिल्कुल सर।
2: तो 1970 में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई
3: जी,
2: तो पंजाब हरियाणा ये जो हमारा गंगा नदी का एरिया है
3: जी,
2: इस क्षेत्र में दो फसल आई, गेहूं और चावल।
3: चावल
2: तो ये जो दोनों फसल है
3: जी,
2: ये जो है हमारे शरीर के हिसाब से ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से ये किसके लिए अच्छा था
3: जी,
2: जो मेहनत करते
3: जी,
2: बट आज हमारे जो शहर में खास तौर पे जितने लोग हैं या गांव में भी ऐसे लोग हैं जो शारीरिक श्रम नहीं करते, कोई स्कूल का टीचर है या कोई दुकान पे बैठता है, तो जिसका शारीरिक श्रम नहीं है
3: जी,
2: उनके लिए गेहूं और चावल जो है वो कहीं से भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको पचा पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा श्रम करने की जरूरत है। और मोटा अनाज जिसकी आपने बात कही कि मोटा अनाज ऐसा अनाज है जिसका बहुत जल्दी हमारे शरीर में पचता है, और उससे जो आजकल की जो जो कॉमन बीमारियां हैं, जैसे हम कहें कि हाई बीपी है या शुगर है, ये दो आम बीमारियां पूरे भारत में फैली हुई हैं। तो ये दोनों बीमारियों से यदि हम छुटकारा चाहते हैं तो सबसे बड़ा है कि मोटे अनाज, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा
3: जी।
2: सबसे बड़ी चीज खास तौर पे बुंदेलखंड की
3: जी,
2: बात कहूँ कि मोटा अनाज शरीर के लिए तो अच्छा है, बट ये सबसे कम पानी की जरूरत इसमें महसूस होती है। तो यदि हमें बुंदेलखंड में, और हम माने कि बहुत अच्छे से हमारे दूसरी जनरेशन भी खेती का काम करें, खेती ना छोड़ें, तो हमें मोटे अनाज का अधिक से अधिक उत्पादन, चाहे वो रबी का सीजन, खरीफ का सीजन हो या रबी का, और यदि हम तीसरी फसल भी लेना चाहते हैं तो हम मोटे अनाज की ओर जाएं,
3: बिल्कुल,
2: ताकि हमारे देश की अन्य सुरक्षा भी हो और हमें जितना पानी हमारे पास है उसी पानी में, और ये नहीं, ये केवल बुंदेलखंड नहीं, जहाँ भी पानी की समस्या है वहाँ पे मोटे अनाज पे ही हमें जाना चाहिए।
3: सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत आपने बता दी है। चूंकि आपके पास समय बहुत ही कम है तो हम आग्रह करेंगे कि जब भी आपसे हमारी मुलाकात हो, चाहे वो फोन के माध्यम से या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका भ्रमण हो, तो आप जरूर आइएगा इस विषय को लेकर। चूंकि हम ऐसे विशेषज्ञों को चयन कर रहे थे कि मोटे अनाज पर कम से कम बोल सके, बहुत सारे लोगों से हमने सर टॉक की है तो बहुत ही कम लोगों को इस तरीके के बारे में जानकारी है। क्योंकि मोटे अनाज को लेकर लोग पूछते भी हैं, जब कम्युनिटी के पास या समुदाय के पास हम लोग जाते हैं मोटे अनाज पर, उनसे आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में हमें मोटे अनाज पर जाना चाहिए, लेकिन समस्या यही रहती है कि ना तो उसका बाजार है और ना ही करने का जो तरीका है वो लोग भूलते चले जाए, चूंकि नई जनरेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू, थैंक यू।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और अभी आपने हमारे डॉक्टर राजेश वर्मा जी को सुना, बड़े अच्छे उन्होंने अनुभव अपने बयां किए हैं। साथ साथ में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर बड़े विस्तार से हमारे श्रोता साथियों को बताया है। साथ में मोटे अनाज को लेकर भी उन्होंने प्रकाश डाला है कि किस तरीके से हम अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में मोटे अनाज पर ध्यान दे सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। बड़े विस्तार से

इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया है। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथियों को ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी, और खास तौर पर ऐसी ऐसी जानकारी जो हमारे श्रोता साथियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, हम कोशिश करते हैं उन जानकारियों को कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर राजेश वर्मा जी का, जिन्होंने समय निकालकर इस बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 दिन विजिट किए और कई गांवों का भ्रमण भी किया है, चूंकि ये भारत के कई जगहों पर जाकर इन चीज़ों पर देखते हैं, बातचीत करते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे स्टूडियो में रेडियो बुंदेलखंड में आए और उन्होंने अपनी बातचीत को रखा है। धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम शुभ कल कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से अगर आप हमें अपने सुझाव भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा देगला के पास ओरछा। और हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, और उन्होंने बहुत मधुर आवाज में अपने एक गीत को प्रस्तुत किया है, उस गीत को हम सुनते हैं उनकी ही आवाज में। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों कैसे हैं? मैं आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी अच्छे होंगे। अब बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने पाए हैं, उन सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना, अपने देश का, अपने गाँव का नाम रोशन किया है। साथियों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से, हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करते हैं, कहां पर उनको कैरियर बनाना चाहिए, कैसे कैरियर बना सकते हैं उस विषय को लेकर चर्चा करते हैं, साथ में उनकी आजीविका को लेकर चर्चा करते हैं। सफल जो हमारे साथी रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को, और उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे श्रोता साथी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, चूंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि आज मास कम्युनिकेशन को देखा जाए, पत्रकारिता को देखा जाए तो काफी ब्रॉड होती चली जा रही है, काफी इसका विस्तार हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हमारे युवा साथी इसमें कैरियर बना सकते हैं, कहां अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर संजीव जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं। तो उनसे आज ज्ञान लेंगे, उनसे आज ऑप्शन ढूंढेंगे, उनसे आज जानकारी लेंगे कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर, अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या संभावनाएं होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संदीप जी के पास आपको ले चलते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं इस विषय को लेकर। सर जानना चाहेंगे,
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी रेडियो बुंदेलखंड के श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और रेडियो बुंदेलखंड का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित कर इस वार्ता के लिए सुअवसर दिया।
0: सर देखा जाता है कि अगर बुंदेलखंड की ही बात करें और बुंदेलखंड में खास तौर पर युवाओं का कैरियर, क्योंकि 12th के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नया सेशन भी चालू हो गया है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो चूंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी
1: जी
0: ये जहन में उनके रहता है कि अब आगे क्या करें, किसमें कैरियर बनाएं, कैसे बनाएं, क्योंकि उनका जो मन रहता है बड़ा चंचल रहता है। किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ में अगर किसी ने कह दिया कि आप पढ़ाई करिए, आईएएस आईपीएस की तैयारी करिए, आपको क्या लगता है किस तरीके का लोगों को और खास तौर पर युवाओं को किस तरीके का चयन करना चाहिए? सर
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सटीक समय पे आपका प्रश्न हुआ है, बिल्कुल। बुंदेलखंड रेडियो के सभी श्रोताओं में जो अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा प्रश्न किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा, विशेष तौर पर जो लोग 12वीं पास करने के बाद अपने कैरियर की राह पर खड़े हैं और उनको ये विभूचन है कि अब हम कहां जाएं, किस क्षेत्र को अपनाएं, ऐसे में उन युवाओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि वो मीडिया क्षेत्र को अपना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज इतना व्यापक है और ये मीडिया डिसिप्लिन अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन हो चुका है। देश के न सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग हैं, जहां पर की प्रशिक्षित अध्यापक लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया और रेडियो जॉकी बनने के सपना, बहुत सारे युवा हमारे श्रोता जो इस रेडियो बुंदेलखंड को भी सुन रहे हैं, युवाओं का बहुत ग्लैमर होता है कि या तो वो टेलीविजन में एंकर बन जाएं, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें, या रेडियो में लोग उनकी बातों को सुने। यदि आपकी आवाज में माधुर्य है, मेलोडियस वॉइस है, आपकी वॉइस कल्चर बहुत अच्छी है, आपको संचार कौशल बहुत अच्छा है, बोलने की कला है और आप के पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास आत्मविश्वास है, तो आपको रेडियो जैसे मीडिया क्षेत्र में रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर, रेडियो प्रोग्राम कंटेंट राइटर, आप इसके आलेखक, मतलब स्क्रिप्ट लेखक जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग टेलीविजन में कहते हैं, इसी के साथ आपके लिए टेलीविजन माध्यम है, टेलीविजन मैं आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बहुत ही ग्लैमरस मीडिया है जहां पर ना सिर्फ आप टेलीविजन समाचार चैनलों में रिपोर्टर, एंकर बन सकते हैं, आप उसमें करस्पोंडेंट बन सकते हैं, आप उसमें पीस टू कैमरा कर सकते हैं, आप उसमें समाचारों की गैदरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस जो है डिजिटल फिल्म मेकर बन सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल से लोग फिल्में बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, और इंटरनेशनल, नेशनल और आपके रीजनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, यूथ फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है सिनेमा और छोटे शॉर्ट वीडियो रील कॉम्पिटिशन होते हैं, वहां आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन बहुत ही सटीक और सक्षम तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा अवसर आपके पास वेब मीडिया का है, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया भी कहते हैं या इंटरनेट आधारित मीडिया कह लीजिए, हम कन्वर्जेंस मीडिया के नाम से भी उसी को जानते हैं, और डिजिटल मीडिया भी उसी को कहते हैं, जो हमारे बड़े स्क्रीन से आज हाथ में सभी के बच्चों के, युवाओं के, विशेष तौर पर जो मोबाइल है वो उनका कन्वर्जेंस मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। मोबाइल या छोटे स्क्रीन पर बहुत सारे सीरियल्स देखे जाते हैं, फिल्में भी लोग डाउनलोड करके देखते हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं, आप उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज हैं, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स भी आप वहां देख सकते हैं, किसी पर्यटन क्षेत्र के बारे में अच्छे से आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी विषय को भी गहराई से समझा सकते हैं, आप एनिमेशन की सहायता करके भी, तो एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब मीडिया, टेलीविजन, रेडियो

0: और प्रिंट जिसको मुद्रित माध्यम जो हमारा 100 साल से भी अधिक समय से मुद्रित माध्यम है, वहां पर आप जो है अखबार हैं, और अखबारों में ना सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी अखबार हैं, आज तो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार हैं। अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी 2020 आई है, उसके बाद से युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में हम व्यावसायिक या प्रोफेशनल शिक्षा की बात करते हैं। तो ऐसे में हमारी बुंदेली भाषा हो, हमारी अपनी बघेली भाषा हो, हमारी अपनी अन्य चाहे हमारी निमाड़ की भाषा हो, मालवी भाषा हो, उन सब स्थानीय भाषाओं में आज बढ़ चढ़ कर होता है। और उसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिन्नू रदानी को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, धमाल वे खूब कर रही हैं और खूब लोगों ने सुन रहे हैं और उनके श्रोता जने भी खूब हैं। तो बिन्नू रानी से प्रेरणा लेकर हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के, अपने घर की, अपने बुंदेलखंड की माटी की बिन्नू रानी जरूर बने।
1: बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में भी कई सारे मतलब कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी, खासतौर पर 12th के बाद, जैसे कि इस क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा युवा साथी जाना चाहता है, तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको आसान तरीके से और किस किस क्षेत्र में वो कोर्स किए जाते हैं, वो सर विस्तार से।
0: मैं आपकी पुनः प्रशंसा करूंगा। दूसरा प्रश्न भी आपने युवाओं के हित में बहुत सटीक और बहुत अच्छा किया हुआ है। मैं इस बात पर आने ही वाला था। हमारे मखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो अपनी इस समय द वीक और इंडिया टुडे रैंकिंग में टॉप 10 मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, वहां पर ढेर सारे पाठ्यक्रम हैं। उनके विस्तृत विवरण के लिए मैं सलाह दूंगा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और रेडियो बुंदेलखंड के सुनने वाले श्रोताजन mcu.ac.in वेबसाइट को विजिट करें। हमारे भोपाल मुख्यालय परिसर है, इसके अलावा हमारा दतिया परिसर है, हमारा बघेलखंड में रीवा परिसर है, और निवाड़ में हमारा खंडवा परिसर है जो, और इसी तरीके से हमारा एमसीयू दर्शन टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में, और रेडियो करमवीर भी है, तो वो भी युवाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए है। रहा 12th पास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का, तो हमारे पास बैचलर कोर्स जिनको हम यूजी पाठ्यक्रम कहते हैं, वो एनईपी आधारित 4 वर्षीय हमारे यूजी पाठ्यक्रम है। दतिया परिसर में हमारे पास बीए जनसंचार पाठ्यक्रम है, और साथ ही बीबीए मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट हम दतिया परिसर में दे रहे हैं। खंडवा और रीवा परिसर में भी हमारे बैचलर पाठ्यक्रम है, और हमारे विश्वविद्यालय के बैचलर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो हमारे पास बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास बीए जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग में है जिसको हम बीए जेसीडब्ल्यू कहते हैं। इसके बाद हमारे पास बीए इन मीडिया रिसर्च है, बीए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, बीएससी फिल्म प्रोडक्शन है, बीएससी मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में है, बीएससी एनिमेशन में हमारे पास बीए मास कम्युनिकेशन है, बीए इंग्लिश जर्नलिज्म है, और हमने बीए हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद प्रौद्योगिकी में भी इसी वर्ष से शुरू किया है, क्योंकि एनईपी में हमारी भारतीय भाषाओं पर काफी जोर दिया गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी ने, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक थे, उस समय भी उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया था, और उसी से प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस अकादमिक सत्र 2024 में भारतीय भाषा, विशेष तौर पर हिंदी एवं अनुवाद प्रौद्योगिकी, हिंदी एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का एक बैचलर कोर्स शुरू किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम हमारे पास यूजी हैं, और इसी तरीके से हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है जिसमें किसी भी स्नातक, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, होम साइंस का हो, फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उनके लिए एमए प्रसारण पत्रकारिता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एमए इन डिजिटल जर्नलिज्म है, एमए इन प्रिंट जर्नलिज्म है, एमएससी मीडिया शोध है, उसके बाद हमारा एमएससी न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, फिर हम एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देते हैं, हमारे पास एमबीए इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, हम एमबीए भी ऑफर करते हैं, एमए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी है, एमएससी फिल्म प्रोडक्शन है, एमए मास कम्युनिकेशन है, हम लोग एमलिव और बीलिव पाठ्यक्रम भी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मीडिया पाठ्यक्रम, और हमारे पाठ्यक्रमों की एक विशेषता है कि हम लोग हर 2 साल में उनको अपडेट करते हैं, उनको मीडिया इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उनको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाने

0: डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जीके की तैयारी करवाते हैं, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, उनको हम कैमरा फेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, पीस टू कैमरा उनको सिखाया जाता है, उनको वक्तव्य कला जो है उनको मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप अपने गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई मूवमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, इंटरव्यू कैसे दें, और आप में कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, इन सब बातों पर दिया जाता है। जैसे आपके रेडियो माध्यम में आवाज के आरोह अवरोह को, वॉइस मॉड्यूलेशन को, वॉइस कल्चर को, वॉइस डिलीवरी को, वॉइस को, क्योंकि कानों का माध्यम है तो इसमें आप रिपीट नहीं कर, इसमें आपके उच्चारण की शुद्धता चाहिए, भाषा की सरलता चाहिए, सटीकता चाहिए, साथ ही एक गति ऐसी चाहिए कि श्रोता आराम से सुन पाए, क्योंकि उसको दोबारा सुनने का, उसका अर्थ समझने का अवसर नहीं है जो प्रिंट माध्यम है। रेडियो माध्यम बहुत ही अलग माध्यम है, तात्कालिक माध्यम है, ताजा माध्यम है, क्योंकि इसमें इमीडिएसी का महत्व है।
1: बिल्कुल सर,
0: इसमें कोई भी अंतर वस्तु को आप बहुत तत्काल और ताजा अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं, और ये एक ऐसा माध्यम है कि आपका श्रोता अपने काम करते हुए सुन सकता है, वो अपने ऑफिस में, यात्रा के दौरान, कार चलाते हुए, अपने दफ्तर में, इवन गृहिणी अपने घर में भोजन पकाती हुई रेडियो माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज भी लगभग 100 वर्ष होने को है, अगले तीन हम लोग 97 वर्ष रेडियो प्रसारण के भारत में कर चुके हैं, और रेडियो माध्यम आज भी पॉपुलर है, और हम देख रहे हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो और कम्युनिटी रेडियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री, वो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करती है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का रेडियो बुंदेलखंड स्टेशन से आज मैं इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आभारी हूँ, और उन सभी श्रोताओं का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ जो आज इस रेडियो बुंदेलखंड के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़े हैं।
1: सर, इसमें से बस चूंकि आपका समय अमूल है, हम जानते हैं सर, इसमें से भी दो प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो हमारे जो युवा साथी रहते हैं उनको मतलब ये रहता है कि हम लोग कोर्स करते रहें, साथ साथ में हमारे हाथ में जॉब होनी चाहिए, अच्छी से जॉब होनी चाहिए। दूसरा एक ये रहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 वर्ष लगता है तो उतना समय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके माध्यम से कि वो उसको भी करते रहें और उसको अपना जॉब को भी देखते रहें। ये
0: जी, हम लोग चूंकि एक विश्वविद्यालय व्यवस्था के तहत हैं, उच्च शिक्षा अध्ययन के तहत हमारे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स हैं, तो उन सब की अवधि, तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हमारा 1 वर्ष का है, माखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम है, जिनको आप mcu.ac.in पे जाके डिटेल विस्तृत विवरण देख सकते हैं। वहां पर हमारे डिजिटल मीडिया, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जैसे भी कार्यक्रम है, और साथ ही हम जो है दतिया परिसर में बहुत जल्दी वहां पर अभी माननीय कुलपति जी एक कमेटी बना के उस पर तय कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्टिंग में और रेडियो जॉकी भी यहाँ पर प्रस्तावित है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। बिन्नू रानी जैसे हमारे जो आज 8वीं पास हमारी बालिका धूम मचाई हुई है, तो उससे प्रेरित होकर अभी बहुत सारे युवाओं ने ये बात, मैं पिछले 2 दिनों से दतिया परिसर में हूँ तो विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान ये बात समझ में आई कि यहाँ पर फिल्म एक्टिंग को लेके और यहाँ पर रेडियो जॉकी के पाठ्यक्रमों की काफी मांग है, तो हम लोग भोपाल में इस पे विचार करके जल्दी यहाँ पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम रेडियो जॉकी पे, आरजे पर और एक्टिंग पर करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय समय समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम भोपाल में आयोजित करता है, अगर दतिया परिसर में आपके रेडियो बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान में सहयोग से यदि बहुत सारे युवा सहयोग करेंगे, अभिरुचि दिखाएंगे और आप यदि हमसे सहयोग चाहेंगे तो हम अपने दतिया परिसर में आपको रेडियो जॉकिंग और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, जैसा भी आपको उपयुक्त संगे, 2 हफ्ते का हम लोग कर सकते हैं, और बहुत ही उसमें मतलब विद्यार्थियों से हमारा कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है, तो हम उसको निःशुल्क आयोजित कर सकते हैं, पंजीयन शुल्क वगैरह कुछ न्यूनतम उसमें हो सकता है, और उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय से आपको जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी आवश्यक सामग्री है, जो प्रशिक्षण सामग्री है, किट वगैरह है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जब इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग जरूर उस पर विचार करते हैं और हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के

0: युवाओं के लिए यदि सेवा का देखा अवसर रेडियो बुंदेलखंड के सहयोग से हमें प्राप्त होता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने छोटे समय में ही बहुत सारी हमारे युवाओं को प्रेरणादायक बातचीत बताई है, साथ साथ में उनके कैरियर को लेकर, उनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर, और खास तौर पर बहुत सारी ऐसी आपने बातचीत बताई है जिससे हमारे युवा साथी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और इस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर
0: रेडियो बुंदेलखंड और यहाँ की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ, और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई बहनों को, बिन्नुवन को हम जय का ऊंचा कि वे आए और जा क्षेत्र में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे बिन्नु रानी धमाल कर रही, आप और रन भी धमाल करें, जय बात के साथ, जय राम जी।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और अभी आपने डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को सुना जो एचयूडी है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से, और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे युवा साथी अपना कैरियर भविष्य बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी अपना करियर अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पर रील हुई और फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, साथ साथ में छोटे छोटे चैनल भी, हमारे यूट्यूबर चैनल जिसे कहा जाता है वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपनी सच्चाई को दिखाकर, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है, किस तरीके से अपना भविष्य बना सकते हैं इस विषय को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बात बताई है। इसके लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, और हमारा पता है जो आप चिट्ठी के माध्यम से हमें अपने बातचीत को भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्रिका का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगला के 5 ओरछा, और आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

आप आगे देखें, कहने लगी वो आत्मा, रहती अनपढ़ तो उस पर भी ना थी उजर। मैं अनपढ़ भी बनी रहती तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे जिंदा तो रहने देते।

अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी।

आप सभी का स्वागत है हेल्थ ऑन एयर के पॉडकास्ट पर। आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण का महत्व। प्रेगनेंसी के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आज का कॉलम लिया गया है सुमेंद्र बग्ची के आर्टिकल से। सुमेंद्र बग्ची पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और कोविड वैक्सीन स्पेशलिस्ट हैं। आज इस पॉडकास्ट के द्वारा हम जानेंगे कि टीकाकरण क्यों महिलाओं के लिए गर्भावस्था में इतना महत्वपूर्ण होता है। ये सच है कि बच्चों के टीकाकरण की तुलना में गर्भवती महिलाओं में नियमित टीकाकरण का दर हमेशा कम होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी टीडीएपी वैक्सीन का कवरेज 56.6% है। आज भी कई चिकित्सक और समुदाय के सदस्य गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण को लेकर झिझकते हैं, क्योंकि इससे गर्भावस्था के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शिशु पर संभावित हानिकारक प्रभावों के कारण गर्भावस्था के दौरान कई दवाओं का सेवन मना होता है। हालांकि जहां तक टीकाकरण का सवाल है, दुनिया भर में सुरक्षा मुद्दों का सख्ती से पालन किया जाता है, और अब हमारे पास स्पष्ट डेटा समर्थित समझ है कि क्या सुरक्षित है और क्या असुरक्षित है। मातृ टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है? मातृ टीकाकरण के दो अलग अलग फायदे हैं। सबसे पहले, यह गर्भावस्था की अवधि के दौरान मां और भ्रूण दोनों को गंभीर संक्रमण से बचाता है, और दूसरा, यह आईजीजी और आईजीए एंटीबॉडीज के प्लेसेंटल ट्रांसफर द्वारा जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को संक्रमण से बचाता है। इम्यूनोग्लोबिन ए यानी आईजीए, यह श्वसन पथ और पाचन तंत्र के स्तर के साथ साथ लार, आंसू और स्तन के दूध में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन जी यानी आईजीजी, यह सबसे आम एंटीबॉडी है। यह रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में होता है। यह बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण से बचाता है। गर्भावस्था के दौरान कौन से टीके लगवाना वर्जित है? जीवित क्षीण वायरस टीकों यानी लाइफ अटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन्स से गर्भावस्था के परिणामों पर संभावित प्रतिकूल प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। वर्तमान में उपलब्ध लाइफ के उदाहरण क्षीण टीके वायरल संक्रमणों के खिलाफ खसरा, कठमाला, रुबेला, चेचक, पीला बुखार, इन्फ्लुएंजा और मौखिक पोलियो वैक्सीन शामिल है। जीवित क्षीण जीवाणुरोधी टीकों में तपेदिक, बीसीजी और मौखिक टाइफाइड टीका शामिल है। गर्भवती महिलाओं में वैक्सीन का भरोसा कैसे बढ़ाएं? महिलाएं अपनी व्यापक घरेलू जिम्मेदारियों के कारण अक्सर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का कम उपयोग करती हैं।

और अपनी भलाई की उपेक्षा करती हैं। गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण के लाभों के बारे में सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रमुख निर्धारक है। टीकाकरण के महत्व के बारे में सफल वकालत में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की प्रमुख भूमिका है। गर्भवती महिलाओं के मन में सकारात्मक प्रभाव के लिए प्राथमिक देखभाल चिकित्सा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं में मातृ एवं नवजात टेटनेस से सुरक्षा के लिए टेटनेस टॉक्साइड वैक्सीन या TDAP की कितनी खुराक लेनी चाहिए? भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आमतौर पर 3 टीकाकरण की सिफारिश की जाती है। इन टीकों में टेटनेस टॉक्साइड, TDAP और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन शामिल है। टेटनेस एक घातक जीवाणु संक्रमण है जिससे माँ और नवजात शिशु दोनों को खतरा होता है। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी के कारण यह घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और इलाज न किए जाने पर घातक जोखिम पैदा कर सकता है। नवजात टेटनेस ठीक न हुए नाभि स्तंभ के संक्रमण के कारण होता है। वैक्सीनेशन ही इसकी रोकथाम का एकमात्र तरीका है। टेटनेस टॉक्साइड के टीके गर्भावस्था के दौरान भी सुरक्षित हैं। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में गर्भावस्था के दौरान 2 खुराक की सलाह दी जाती है, जिसमें 3 साल के भीतर अगली गर्भधारण के लिए बूस्टर खुराक होती है। TT टीकाकरण मातृ एवं नवजात सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे समय से पहले होने वाले बच्चे की जन्म की संभावना को कम किया जा सकता है। गर्भावस्था का पता चलने पर TT1 यथाशीघ्र दिया जाना चाहिए। TT2 TT1 के 4 सप्ताह के बाद दिया जाना चाहिए। यदि मां ने पिछली गर्भावस्था में 3 साल के भीतर TT2 की खुराक ली है तो भारत के राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार TT की 1 बूस्टर खुराक की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि स्तनपान अवधि के दौरान कौन सी टीकों की सिफारिश की जानी चाहिए। एमपॉक्स, चेचक और पीले बुखार के टीकों को छोड़कर अन्य सभी टीके जैसे निष्क्रिय, जिनमें की एंथ्रेक्स, हेपेटाइटिस ए, HPV, इन्फ्लुएंजा, JE, IPV और रेबीज आते हैं। इसी के साथ लाइव अटेन्यूएटेड यानी जीवित क्षीण वायरस, जिनमें इन्फ्लुएंजा, MMR, चिकन पॉक्स और थायराइड आता है, ये सभी लिए जा सकते हैं। लाइव अटेन्यूएटेड यानी जीवित क्षीण, जिनमें आते हैं इन्फ्लुएंजा, MMR, चिकन पॉक्स, टाइफाइड। रिकॉम्बिनेंट यानी पुनः संयोजक, जिनमें आते हैं हेपेटाइटिस बी और मेनिंगोकॉकल। कॉन्जुगेट यानी संयुग्म, जिनमें आते हैं HIV, PCV, मेनिंगोकॉकल। पॉलीसैकेराइड, जिनमें आते हैं PVC और टाइफाइड। ये सारे वैक्सीन स्तनपान की अवधि के दौरान सुरक्षित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। हालांकि बाल टीकाकरण दरों में काफी प्रगति हुई है, लेकिन गर्भवती महिलाएं अभी भी बड़े पैमाने पर वंचित हैं। टीकों पर विश्वास पैदा करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामान्य चिकित्सकों, प्रसूति रोग विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा बेहतर संचार रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता है। विश्वास निर्माण का यह प्रयास न केवल बच्चों और माँ की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि टीकाकरण के समग्र रूप में समाज को मिलाने वाले व्यापक स्वास्थ्य लाभों के लिए भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को हम सुनेंगे, क्योंकि अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी गिर गया है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है, उस पर भी हम ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी, हमारे जो जान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती भी हुई है, तो उसमें नैनो खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। चूंकि एक्सपर्ट आज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो कल हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। लेकिन आज इस विषय जो समसामयिक चर्चा भी है कि क्या इस मौसम में क्या देखभाल, क्या किसानों को सावधानी, किस तरीके तैयारी, क्या करना चाहिए, इस विषय पर बातचीत आप करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम को। लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

की अगर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और खेत खलिहान कार्यक्रम में साथियों, हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय

0: हर मौसम आधारित जानकारी देते हैं, किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है, लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब जायज के चूंकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन से ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपनी खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, मतलब जरूरत से 2 गुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70 से 80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं। तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
0: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
1: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में, या बोल सकते हैं हम प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार, नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है, तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौध तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही हमको मौसम 1 या 2 दिन का खुला दिखे और जैसे हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है, लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है।
0: जी,
1: तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
0: जी। और रुपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रुपाई, चूंकि एक विधि रहती है रुपाई की, तो कौन सी ऐसी
1: जी
0: विधि
1: सर,
0: है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
1: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है, तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है वो एक लाइन मेथड में हम करें, क्योंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60x60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60x45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60x60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको, और किस तरीके से बीज उपचार करना चाहिए?
1: जी सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि बरसात के सीजन में खरपतवार की संख्या बहुत ज़्यादा लगती है।

0: आधी मात्रा का, जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूम में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूम में आधार खरपतवार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
0: जी सर बिल्कुल। अभी क्या होगा, जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा, अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर मिर्ची भटे और भिंडी, अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर, और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा, तो ये क्या होता है जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है। तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पे या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो गई है तो हम इसके लिए समय समय पे हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
1: बिल्कुल। और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूंकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियां, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियां, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों
0: बिल्कुल
1: को?
0: सर, अभी क्या है, जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज्यादा होने की वजह से सब्जियां की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही, जिसको हम पीथियम एपेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू ये फैलता है। तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पे कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC, जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सॉल्यूशन और साथ में ही हम मैनकोजेब या M45 का 1% सॉल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
1: बहुत बढ़िया जानकारी। और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूंकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए, वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, क्योंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें, और हम अगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी, और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाते हैं, लगाई भी है, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
0: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भी भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको वायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वैरायटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। जैसे हम बात करें अरका नाम का वैरायटी की, या पूसा भिंडी 5 की, या आपका पूसा मखमली वैरायटी की, या काशी लालमा वैरायटी, ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वैरायटी भी हैं, जो चूंकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं, और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वैरायटी की अपेक्षा।
1: जी। और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है?
0: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका।
1: अच्छा,
0: तो चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया, उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है, वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी, और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

कि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा, और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए। साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चल दे आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से भजन को। नमस्कार।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, चूंकि

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जनने के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों एक क्रम में आज भी अपन एक विधा को सुने और विधा को आनंद ले हैं। बा विधा है लांगुरिया। जी हाँ दोस्तों, सो देखो लांगुरिया गीतन को अपन सुनते हैं और इन गीतन को आनंद लेते हैं। सो आओ सबसे पहले गीत सुनते हैं अपन भैया हरदयाल जी के स्वर में के बेंदा ले दे लांगुरिया। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

नौ ने मड़ के नौ दरवाजे के दर्शन कर ले लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ये लांगुरिया गीत को, आनंद लो है दोस्तों। ये लांगुरिया को गा रहे थे भैया दिनेश सोनी जी और संगे गा रही थी संध्या सरगम जी। सो आओ दोस्तों अब एक क्रम में कार्यक्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को और लेते हैं लांगुरिया गीत को आनंद। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

मोरो सुनो डरो लिलार के बेंदा लेदे लांगुर गया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुर गया गीत अपन सब जन ने सुनो है, ये गीत को आनंद लो है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया हरदयाल वर्मा जी। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनत हैं अगले साथियों की गाय भाई लांगुरिया को। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, देखी शिव की अजब बारात गांव की भग्गा लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ई लांगुरिया को, आनंद लव है ई लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया चतुर्भुज जी। सो दोस्तों अब चतुर्भुज भैया जी की लांगुरिया के बाद आओ सुनते हैं अगले साथी की गाई भाई लांगुरिया को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन भैया के संग में।